0: उसके बाद हमने बयान किया, ऐ खुदा के बंदे अपनी जिंदगी के अंदर सब्र के दामन को अपने साथ रख तो इंशाअल्लाह ताला तुझे कामयाबी मिल जाएगी। और आखिर में हमने जो बात की थी वो क्या थी? वाह, बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पिछली बार हमने ये बयान किया था कि खुदावंद करीम ने कामयाबी की बात उस तरफ की है कि जहां बंदा अपने आप को अजाब से अगर बचा सके, और अजाब से बचाने की अगर कोई ढाल है तो वो है इस्तगफार। थोड़ी बात को आगे चलाते, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सूरे अपना दुखान की 91वीं आयत मैंने पढ़ी, चैप्टर 4:4 वर्स नंबर 51। ये जन्नतों की बात, जो जन्नती लोग है उसकी बात खुदा कर रहा है। कौन? इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। वहां पर इतने फायदे उठा रहे, इतने फायदे उठा रहे। कहां पर? वहां। तो जन्नत में क्या होगा? आयतें पढ़िएगा आप घर जाके। उसके बाद वाली आयत में पढ़ता हूं, 56वीं आयत, चैप्टर 40:56। खुदा कह रहा है जन्नत में लोग पहुंच गए होंगे। कौन पहुंचे थे जन्नत में? मुत्तकी, शाबाश। वो जन्नत में पहुंच गए होंगे। ला यज़ूकूना फ़ील मौत इल्ला मौततल उला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम। वो लोग जन्नत में पहुंच गए होंगे, ठीक है, और वहां पर दोबारा उसको या उनको मौत की मजा नहीं चखनी पड़ेगी, सिवाय वो मौत के जो वो गुजर के आए हैं, मर के वहां पहुंचे थे ना। इल्लल मौततल उला व वकाहुम अज़ाबल जहीम। मौत के बाद खुदा बंदे करीम ने उनको उनसे अजाब जहीम से उनको बचा लिया। उसके बाद वाली आयत 57, खुदा ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फदलम मिन रब्बिका, फदलम मिन रब्बिका। खुदा जब अजाब को उठा लेता है तो वो खुदा का फजल करम होता है। फजलम मिन रब्बिका ज़ालिका वल फौज़ुल, क्या लिखा है? अज़ीम। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हमने ये बयान किया था कि जब बंदा अपनी जिंदगी में और आखिरत में ये काम कर सके कि बंदा अपने आप को अजाब से मुक्त कर ले, अजाब से महफूज कर ले, तो वो अजाब से महफूज होने वाली ढाल क्या थी? कल बयान हुआ था, चैप्टर 8:3, ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ का बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। खुदा बंदे करीम इस कौम को कभी भी अजाब में मुब्तला नहीं करेगा ए मेरे हबीब, जब तक कि तू इनके दरमियान है, और इन कौम को अजाब में मुब्तला नहीं करेगा कि जब तक ये इस्तग़फार करते रहेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो एक कदम आगे बढ़ना है। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हम किस माशरे में रह रहे हैं, हमारे कानों में कैसी कैसी बातें आती है, और बातें जब आती है तो हम गौर भी नहीं करते कि मौलाना हमारे सामने क्या पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम फकत मौलाना को सुनते हैं, लेकिन जब खुदा की बात आती है तो कभी भी हमारे सामने खुदा की बात शायद पेश नहीं होती। देखिए नबी करीम का मामला है। परवरदिगार आलम ने सूरह अनआम कुरान मजीद का 6 सूरा आयत का निशान है 15, ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ चैप्टर 6:15 का बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कुल, अरे मेरे हबीब कह दीजिए, कुल इन्नी अखाफो इन असैतो रब्बी अजाबा यौमिन अजीम। ऐ मेरे हबीब अपनी कौम को कह दे मैं नबी करीम डरता हूं। रसूल खुदा को हुक्म दिया जाता है, तेरी कौम को कह दे कुल इन्नी अखाफो इन असैतो रब्बी अजाबा यौमिन यौम अजाबा यौमिन अजीम। कह दीजिए तेरी अपनी कौम को मैं डरता हूं कि अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो अजाब यौम अजीम से मैं डरता हूं। मैं अजीजा ने मोहतरम रसूल खुदा की जात, उनको कहा जाता है कि कह दे कि अगर मैंने अल्लाह सुबहान व तआला की नाफरमानी की तो मैं डरता हूं। और हमें क्या सिखाया जाता है?
1: हमें किसी

किसी की परवाह नहीं, हमें किसी का डर नहीं। और नबी करीम को कहा जाता है कि तू अपनी कौम को समझा दे कि अगर अल्लाह सुबहानहु व तआला की नाफरमानी की तो क्या होगा। नबी करीम डरता है और मुझे कुछ डर नहीं है, लेकिन हमारा मौजू क्या है, फौज, कामयाबी लेनी है। उसके बाद 16वीं आयत आती है, चैप्टर 6 वर्स नंबर 16, खुदा कहता है वमन युसरिफ अनहु यौमइज़िन फकद रहिमा ذالिका हुवल फौजुल ذالिका الفوزुल मुबीन। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कयामत के दिन की अजाब से मैं डरता हूं, और उस दिन जिसे ये अजाब उठा लिया जाए, वमन युसरिफ अनहु, जिससे ये अजाब उठा लिया जाएगा तो गोया यूं समझा जाएगा कि उस पे रहम किया गया। मतलब क्या हुआ कि जब किसी पे रहम किया जाता है उसके बाद खुदा ने कहा कि ये फौजे मुबीन है। नतीजा क्या निकला कि ऐ खुदा के बंदे तुझे क्या खुदा की रहमत नहीं चाहिए, क्या तू नहीं चाहता कि खुदा तुझ पे रहम करे। खुदा ने तो यहां बता दिया कि जिसके ऊपर रहम किया जाएगा, जिसको खुदा अपने रहमत में शामिल हाल करेगा, वो फौजे मुबीन तक चला जाएगा। एक और आयत आपको याद दिला दूं, ये बातें हम जब हमने ईमान और अमल की बात की थी, सूरह जाथिया की 30वीं आयत, चैप्टर 45 वर्स नंबर 30, खुदा ने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फअम्मा अल्लज़ीना आमनू وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ। जो लोग ईमान लाए और अमल सहले को अंजाम दिया उनको खुदा बंदे करीम अपनी रहमत में डालेगा। जब किसी को खुदा बंदे करीम अपनी रहमत में डालता है तो नबी ने क्या कहा, खुदा ने क्या कहा, ये फौजे मुबीन है, खुली कामयाबी है। नतीजा ये निकला कि मुझे और आपको ये तलाश करना है कि वो कौन से काम है जिसकी वजह से मैं रहमते परवरदिगार का हकदार बनूं। सिलसिला आप सुन रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आइए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए थोड़ा काम आपको देता हूं, आज जाके कुरान मजीद को खोलिएगा। कुरान मजीद में एक सूरा है जिसके दो नाम है, 40वां सूरा उसका एक नाम है सूरतुल गाफिर, दूसरा नाम किसी को पता है जी, 40वां सूरा अल मुमिन, मोमिनून नाम का सूरा है 23वां, यह है 40वां सूरा जिसके दो नाम है अल मुमिन, अमान देने वाला, दूसरा नाम क्या है अल गाफिर, माफ करने वाला। यह सूरे की इब्तिदा में खुदावंद करीम हमारे सामने यह बयान कर रहा है कि मेरे फरिश्ते बंदों, मेरे बंदों के लिए दुआ करते हैं। फरिश्ते बंदों के लिए दुआ करते हैं, वो घर जाके आप पढ़िएगा, मुझे पढ़ना है जो मेरे काम की चीज है। चैप्टर 40 वर्स नंबर 9, फरिश्ते खुदा की बारगाह में दुआ करते और कहते हैं वकीम सैयात, ऐ परवरदिगार ये तेरे जो बंदे हैं ना उनको बुराई से तू महफूज रख, वमन तकी सैयात यौम इदिन, और खास दिन उस दिन अल्लाह सुबहान व ताला जिसको बुराइयों से बचा ले, फकद रहिमता, फरिश्ते कहते हैं खुदाया जिसको तू कयामत के दिन बुराइयों से, सैयात से, बुरे अंजाम से जिसको तू बचा लेता है, गोया तूने उस पे रहम की। उसके बाद क्या है, वज़ालिका वल फौज़ुल अज़ीम। तीसरी बात बताई कि जहां जहां खुदा वंदे करीम अपने बंदों पे रहम करता है, अगर खुदा वंदे करीम बंदों पे रहमत

0: उसकी इत्तेबा करो, उसके पीछे पीछे जाओ। आपको याद है, मुझे याद नहीं 2 साल पहले मैंने ये बात की थी या नहीं, लेकिन जुरात के साथ कहता हूं कि आई मेरे आजादार हुसैन, हम 12 इमामी लोग हैं। कितने? 12 इमामी लोग। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, हकीकत में अगर देखा जाए तो हमारे यहां 13 इमाम है, 13। आपने कहा ये कौन आया है मौलाना, ये कौन सा मौलाना है जो 13 इमाम की बात करता है। चलो पहले यहां से बात को शुरू करते हैं। हम हैं शिया, बराबर। शिया का मतलब क्या होता है? नहीं भाई,
1: जाने वाला।
0: नहीं, ये नहीं, फॉलो करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, इत्तेबा करने वाला। हम हैं शिया इत्नाशरी, 12 इमामों के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं हम ना। कुरान ने क्या कहा? कहा तुम इस कुरान के पीछे चलो, इसकी इत्तेबा करो। हम 12 इमाम हैं, 12 इमामी हैं, इमामों की इत्तेबा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन खुदा ने यहां पर यह भी कहा कुरान में कि इस कुरान की इताअत, इत्तेबा करो। ये 13 इमामों वाली बात मेरी बात नहीं, ये हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का हुक्म है, अलैकुम बिल कुरान फत्तखिदूहू क़ाइदन व इमामा। ऐ मुसलमानों, कुरान का साथ पकड़ लो। अलैकुम बिल कुरान फत्तखिदूहू क़ाइदन व इमामा औ हादियन व इमामा। कुरान मजीद को अपनी जिंदगी में रहबर और इमाम के लिहाज से समझ लो। ये कुरान तुम्हारा इमाम है, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन हमने कुरान के साथ क्या किया? जो कुरान का हक था वो क्या हमने अदा किया? खुदा ने कहा हाजा किताबुन अनज़ल्लाहु मुबारक फत्तबऊ वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये किताब बाबरकत किताब है, उसके पीछे जाओ, उसकी इत्तेबा करो, तक्वा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून। मैं आपसे पूछता हूं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ओ फोन आया, उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं उठा रहा बाद में। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, नबी करीम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? खुदा ने इसी कुरान मजीद में ऐलान किया है, सूरह फुरकान कुरान मजीद का 25वां सूरह, आयत का निशान है 30, चैप्टर 25 वर्स नंबर 30। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाल रसूल या रब इन कौमी तकदु हादल कुरान महजूरा। नबी करीम कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने तेरी इस किताब कुरान मजीद को एक तरफ छोड़ दिया है, और ऐसे ही नहीं छोड़ा, वत्तखदू लफ्ज आया है इन कौम इत्तखदू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने जानबूझकर, अनजाने में नहीं, जानबूझकर तेरी ये किताब को लोगों ने छोड़ दिया है, मुझे कामयाबी चाहिए, यह किताब है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और यह बात मेरी नहीं आई है कुरान में, नबी ने कहा था ना इस कुरान को अपना इमाम बनाइए, खुदा ने कहा था इस कुरान की इत्तेबा करो। वही कुरान कह रहा है सूरे बनी इसराइल कुरान मजीद का 17 नंबर का सूरा, आयत का निशान है 9, चैप्टर 17 वर्स नंबर 9, सूरत बनी इसराइल। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम। बेशक बेशक ये कुरान जो है

खुदा की रहमत नसीब हो जाए, वही फुटबॉल वाली बात। ऐ खुदा के बंदे सुधर जा, तुझे कामयाबी चाहिए। देख यहाँ पर खुदा रहमत के हवाले से कामयाबी को बता रहा है और रहमत के हवाले से नमाज की तरफ तुझे बुला रहा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे चलिए कुरान मजीद में, परवरदिगार आलम सूरह नमल कुरान मजीद का 27वां सूरा और आयत का निशान है 46 चैप्टर 27 वर्स नंबर 46। जनाब सालेह अपनी कौम में आए हैं, जनाब सालेह और कह रहे हैं कौला या कौम लिमा तस्तअजिलूना बिस्सय्यिअत क़ब्ल अल-हसन। देखिए देखिए ये कुरान की हर बात मुझ पे लागू होती है। नबी सालेह ने अपनी कौम को क्या कहा, ऐ मेरी कौम कौला या कौम लिमा तस्तअजिलूना बिस्सय्यिअत क़ब्ल अल-हसन, अरे तुमको क्या हो गया है, तुम हजरात बुरे काम में पहले जल्दी क्यों करते हो नेकी के काम से पहले, क्यों अपनी जिंदगी में नेकी के काम तुझे आपको सूझता नहीं। वो कह रहे हैं नबी सालेह अपनी कौम को قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم। अजीब, तुमको ऐ मेरी कौम बुराई के काम क्यों सूझते हैं, इन्होंने कल मुझे सिखाया बुराई के काम क्यों सूझते हैं नेकी से पहले, एक काम करो अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार कर लो ताकि लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तुम पे रहम करे शायद। वापस इस्तगफार आया ना, बार बार हमने बयान किया ऐ खुदा के बंदे ये इस्तगफार वो तोते का इस्तगफार नहीं है, ये इस्तगफार वो होना चाहिए कि बंदा अपने आप को शीशे के सामने देख पाए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, जो कह रहा हूं वो सही है, जो करने जा रहा हूं वो सही है। ऐ खुदा के बंदे इस्तगफार अपनी जिंदगी में अगर लाया तू तो खुदा की रहमत तेरे शामिल हाल होगी। दो दिन पहले एक आयत आपके सामने पड़ी थी, वापस आज दोहरा देता हूं। देखिए बात रहमत की हो रही है, वापस ऊपर जाता हूं शायद आप खो गए होंगे। खुदा ने कहा था, फरिश्तों ने दुआ मांगी थी और कहा था कि जब खुदा किसी पे रहम करता है तो वो फौज होता है, वो कामयाबी होती है। इसलिए हमने गुफ्तगू रहमत की छेड़ी है। और आयत को आपको याद दिला दूं, खुदावंद करीम सूरह ज़ुमर कुरान मजीद का 39वां सूरह का निशान है 53 चैप्टर 39 वर्स नंबर 53। सबको आयत पता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم شباش قاري صاحب لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان هو الغفور الرحيم। احسنت اے میرے حبیب کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, مایوس نہیں ہونا, ان الله يغفر الذنوب جميعا, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है, वो कर देगा। लेकिन तू माफ़ी तो मांग, तू गुनाह का इकरार तो कर, तू गुनाह का एहसास तो कर कि तू खुदा की कितनी नाफरमानी कर रहा है, खुदा की शरीयत को अपने पैरों तले कितना किचरता है। किचर ना गुजराती थे यू किचर वो एटले सो उर्दू माँ ऐसे रौंदता है कुचलना, किचरता है गुजराती माँ, अल्लाह की शरीयत को अपने पैरों से कितना कुचलता है। माफी का एहसास कहाँ से तुझे आएगा, अल्लाह की रहमत चाहिए वो सब माफ करने के लिए तैयार है, गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन खुदा के बंदे तू सुधर जा, पहले तू सुधर जा। रहमत जिस पे अल्लाह की नाजिल हो गई वो क्या हो गया, वो कामयाब हो गया। इसलिए खुदावंद करीम ने इस आयत में क्या कहा, लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इसके बाद एक आयत आती है, ये अगर आपने नहीं पढ़ी, ये आयत अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं नीचे उतर जाऊंगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि किसी को

साथ में न्याज खाने की बात आई, न साथ में पिकनिक में जाना, कुछ नहीं। आप एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि कहीं पर भी झगड़े अगर हो दो भाइयों के दरमियान, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम, कहीं पर भी दो भाइयों के दरमियान अगर कोई ऊंच नीच है, झगड़ा है, तो उसको सुलझाना, उसकी इस्लाह कर लेना। लेकिन मेरा काम क्या है, जहां भी झगड़ा हुआ वहां मैं हवा। आज का जमाना यह है, कुछ थोड़ा पता चला व्हाट्सएप पे डालो, थोड़ा पता चला टिकटॉक पे डालो, थोड़ा पता चला स्नैपशॉट पे डालो, थोड़ा पता चला फेसबुक पे डालो, थोड़ा पता चला ऑनलाइन डालो। किसके लिए? ताकि झगड़े जो है वो और जारी रहे। और खुदा ने क्या कहा, तुम्हें रहमत चाहिए, लालकुम तुरहमून, माशरा पुर अमन बन जाएगा, क्योंकि खुदा की रहमत तुम पे नाजिल होगी। कब? जब झगड़े कहीं पर होगे, फसाद कहीं पर होगा, तो उन झगड़ों को तुम मिटाओगे। झगड़े हैं हमारे यहां अमीर भाई, छे मतलब अटला अटला अटला अटला लिमिट ज नथी बेगैर हिसाब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और हवा देना। एक आपको वाकया सुनाता हूं, मेरे उस्ताद मरहूम, उसका नाम आप सब जानते ही होंगे, मरहूम मुल्ला असगर, जानी पहचानी शख्सियत थी, अल्लाह गरी के रहमत करे सब उलमाए किराम को। 1997 में मडगास्कर आए थे, उन्होंने अशरा पढ़ा था, तो उन मजलिसों के दरमियान उन्होंने एक वाकया बयान किया था। कहा एक आदमी था, उसने अल्लाह की बारगाह में एक मन्नत बानी, और मन्नत बानी कि खुदाया मेरा फलां काम अगर हो जाए तो मैं ये करूँगा। उसका काम हो गया, शहर का जो नबी था या पीर था या मौलवी साहब थे या तावीज़ वाला था, जो भी था, गया उसके पास, कहा आगा एक मुश्किल आन पड़ी है। क्या है? का मैंने खुदा की बारगाह में एक मन्नत की थी कि मेरा फला काम अगर कामयाब हो जाए, हमारा मौजू है कामयाब हो जाए, तो मैं अल्लाह की राह में एक काले दुम्बे को ज़बह करूँगा, काले रंग का दुम्बा, और जाके उसको ज़बह करके शैतान को दूंगा, क्योंकि काम बहुत मुहिम था। आगा बाजार में काला दुम्बा ढूंढना, उसमें मेरे कितने दिन गुजर गए। अब रही बात शैतान को कहां ढूंढूं, तो आगा ने कहा ये कौन सी तूने मन्नत मानी है? मैं जोश जोश में मान ली, काम ही कुछ ऐसा था कि बकरा भी हो तो वो काला हो दुम्बा, और जब जबा हो जाए तो वो शैतान को दो। तो सामने वाले पीर ने कहा कोई फिक्र करने की बात नहीं है। उसने कहा बाजार में जाओ और देखिएगा, बाजार में भी कहीं भी झगड़ा होता हो ना, वहां पर एक ऐसा आदमी मिलेगा कि जो फूंक मारता होगा, मार और मार, दिखा दे इनको, लेसन दे दे इसको। एक ऐसा मिलेगा झगड़ों के में बीच कि जो वहां पे हवा देता हो, जाके ये तेरा कटा हुआ बकरा दुम्बा काला उसको दे देना, क्योंकि इससे बड़ा शैतान कोई नहीं है। अब आप सबने सुभान अल्लाह कहा, कभी आईने में देखा है कि उनमें से आप ही नहीं? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो खुदा बंदे करीम ने क्या कहा, क्या लोगो अगर तुम्हें मेरी रहमत नसीब हो गई तो कामयाबी मिल जाएगी। रहमत एक ऐसा मौजू है, लेकिन क्या करें, अब 58 पढ़ू और पढ़ू भाई। हाँ, आपकी इसमें कैसेट में जगह है, है रिकॉर्ड के लिए है जगह। चले सल वाला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहमत परवरदिगार कैसे मिलेगी? खुदा ने ये सब चीजें गिनवाई ना हमको, या वापस गिनवाऊ? वापस मजलिस को देखिएगा, कल रिले होगी 5:30 बजे।

Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thodi der ke liye unke paas bhi jate kyunki khuda ne kya kaha tha ke rasool ki itaat karo la'allakum turhamun. Ab nabi ne ye rahm ke ya rehmat ke कायदे और कवानीन हमारे सामने पेश कर लिए हैं. अगर ये कायदे के अंदर मैं नहीं उतरा तो ये सब पानी में जाएगा, जाया जाएगा. उनमें से पहली बात नबी करीम ने कही है, इरहम तुरहम, रहम कर तो तुझ पे रहम किया जाएगा. तू रहमत की बारिश को लोगों पे बरसा तो तुझ पे रहमत की बारिश बरसेगी. लेकिन तेरे जैसा जालिम कोई मैंने देखा ही नहीं और तू उम्मीद रखता है कि तुझ पर रहम किया जाए. और यह बात भी मेरी नहीं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी करीम ने कहा, मन ला मन लम यरहमिन नास लम यरहमहुल्लाह, जिसने भी लोगों पे रहम नहीं किया खुदा उस पर कभी रहम नहीं करता. जो लोगों पे रहम नहीं करता खुदा उस पे रहमत कभी नाजिल नहीं करता. बज़ाहिर तुझे जो भी लगता हो लेकिन याद रखना कि अगर तू लोगों के ऊपर रहम नहीं करता तो खुदा ने, खुदा के रसूल ने कह दिया है कि खुदा तुझ पे रहम नहीं करता. और उसके बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, मौलाए कायनात कहते थे कि अजीब तो लेमन यरजुर रहमत मिन फौकही वहुवा ला यरहमु मन हुवा दूनहू. मौला कहते हैं मैं ताज्जुब करता हूँ उस इंसान से कि जो ऊपर से रहमत की उम्मीद रखता है. अजीब तो लेमन कान यरजुल रहमत मिन फौकह, मैं ताज्जुब करता हूँ उस बात पर, उस इंसान को देखकर कि जो ऊपर वाले की रहमत की तमन्ना करता है, उम्मीद रखता है, और जो उसके नीचे है उस पे वो रहते हो और नीचे वाले जो है उस पे तुम रहम नहीं कर दो. खुदा की रहमत कहाँ से तुम्हें मिलेगी? यहाँ ख़त्म करूँगा. अभी ये हदीस की मिसाल हम और आप हैं. हम ऊपर वाले हैं मिंबर पे, आप नीचे वाले हैं. हमें खुदा की रहमत चाहिए और ये हमारे यहाँ है. ये तो यूं समझे इस्तेस्नाई मामला है ये माहे मुहर्रम के अज़ा का, वरना हम ऊपर वाले को, मिंबर पे जाने वाले को खुदा की रहमत के हर कोई मोहताज है. लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मजमे पे रहम नहीं करते. इतनी लंबी लंबी मजलिसें पढ़ते हैं जिसमें कई बार लोगों का वक्त को ज़ाया करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ऊपर वाला हम पे रहम करेगा. अभी फ़िलहाल ऊपर वाले हम हैं, नीचे वाले आप हैं. समझ लेना चाहिए हमको, हम मिंबर वालों को, कि ये आवाम पे रहम करने की जरूरत है. एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. देखिए करबला में, करबला में रहम कैसे की जाती है. आज जिसका तज़किरा करना है, कितना गयूर इंसान है वो, कितना शुजा इंसान है वो, कितना बहादुर इंसान है वो, लेकिन उसके अंदर आपने रहम को देखा कि जंग की इजाजत भले न मिली थी लेकिन सीने में जो रहम था ना वो जोश मार रही थी रहमत. इसीलिए हमारे यहां तकरीबन जब भी हजरत अब्बास का अलम होगा उसके साथ मशकेश सकीना की शबी लगी होती है तकरीबन. क्यों? क्योंकि वो खुदा का आदमी था जो कामयाबी की तरफ जाना चाहता था और उनको पता था कि मैं अगर कामयाब होना चाहता हूं तो मेरे अंदर रहम नाम की चीज होनी चाहिए. तफसीलात छोड़ के वो मकाम आ गया कि हजरत अब्बास खैमे से निकले, हुसैन ने जंग की इजाजत

न दी थी, लेकिन कहा था माजा या अब्बास, एक काम कर सकता है तो कर ले। खैमों में छोटे छोटे बच्चों की अल अतश की आवाज़ आ रही है, अब्बास एक काम करो, बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो, नहर फुरात पे जाओ और ये मशकीज़े भर के ले आओ। मशकीज़े लेके जनाब अब्बास नहर फुरात की तरफ तो गए और नहर फुरात में पहुंच गए। अरबाबी मिंबर से आपने क्या नहीं सुना कि जब हज़रत अब्बास ने मशकीज़े को भरा है तो पानी को चुल्लू में लिया है। लेकिन अजब है, हज़रत अब्बास ने पानी नहीं पिया। मैं पूछूंगा, मौला आपने पानी क्यों नहीं पिया? तो शायद शायद हज़रत अब्बास का जवाब आए और कहे, ऐ जाकिर मैं तुझे क्या बयान करूं, जब मैंने पानी को चुल्लू में लिया तो मुझे छोटी सकीना की तस्वीर, छोटे छोटे अल अतश कहने वाले बच्चों की तस्वीर दिखाई देती थी। अरे मैं पानी को किस तरह से पी लूँ? अलहासिल अज़ादारो, हज़रत अब्बास मशकीज़ा भर के वापस आ रहे हैं, अलम भी साथ में है। जब वापसी का रास्ता था, मक्तल में मिलता है कि किसी ने हजरत अब्बास के एक बाजू पे वार किया, अब्बास का एक हाथ कलम हो गया, दोहरा बात आगे गई, दूसरा हाथ भी शहीद कलम हो गया। अब हजरत अब्बास उस घोड़े पे अपने आप को नहीं संभाल पाते, लेकिन क्या थी बात कि मशके सकीना को बचाना है और अलम को हमेशा बुलंद रखना है। उसी वक्त एक हुई, लोगों ने ऐलान किया कि अगर अब्बास की आस तोड़नी है तो वो मश्क के अंदर है। अजादारों क्या हुआ, वहां पे एक तीर मारा गया। आपको पता है तीर की दास्तान क्या है? मुख्तार के दरबार में हुरमला को जब गिरफ्तार किया गया है, हुरमला ने पूछा था, ए हुरमला बता तूने करबला में कितने तीर मारे हैं? हुरमला ने तीन तीरों का तज़किरा किया था। एक तो आपको पता है छोटे अली असगर वाला तीर, एक दूसरा तीर हुसैन मज़लूम की सीने में मारा था और एक तीर ये वाला था। कहा मुख्तार जब अब्बास पानी लेके आ रहे थे, हमें पता था अब्बास की जान उस मशकीज़े में है, इसलिए मैंने तीर मारा, वो जाके मशके सकीना में पैवस्त हुआ, पानी बह गया, अब्बास की हिम्मत टूट गई। अब अब्बास घोड़े पे डगमगाने लगे, इतने में एक जालिम आया, अब्बास के सर पे गुर्ज मारा, अब्बास नीचे आए। अजादारो अब तक जितने शहीद भी थे जब वो जमीन पे गए हैं ना, आपको पता है सबके पास हाथों का सहारा था। अरे हाय अब्बास, अरे जमीन पे गए होंगे तो किस तरह से गए होंगे, बस नीचे आए, अपने माजा या मौला हुसैन को बुलाया। हजरत अब्बास के सरहाने मौला हुसैन आ गए, अब्बास का सर मुबारक आगोश हुसैन में रखा गया। हजरत अब्बास ने कहा ऐ मेरे आका व मौला, दो काम मैं करवाना चाहता हूँ। ये क्या गुस्ताखी है? नहीं, अब्बास के पास बाजू नहीं। कहा मौला दुनिया से जाने से पहले आखिरी ज्यारत करना चाहता हूँ, आका मजबूर हूँ, हाथ नहीं, एक आंख में तीर, अरे एक में खून भरा हुआ है, आका इस खून को साफ कर लीजिए। मौला ने हुक्म की तामील की, उसके बाद कहा आका अब्बास ने कहा ऐ मेरे माजाए हुसैन, एक और इल्तिमास है। कहा क्या? कहा भैया मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, वरना मैं छोटे छोटे बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाजादारो हजरत अब्बास चल बसे। हुसैन मज़लूम ने हज़रत अब्बास के आलम को संभाला, खैमे की तरफ आ रहे हैं। पांचवें इमाम की हदीस है, पांचवें इमाम कह रहे हैं कि उस रोज़ रोज़े आशूर हम खड़े थे, उतने में हमने दूर से देखा कि चचा अब्बास का आलम आ रहा है। हमारी फूफी सकीना ने हमको बुलाया और कहा बच्चों अपने अपने कूजे तैयार करो, मेरा चचा अब्बास पानी लेके आ रहा है। पांचवें इमाम कहते हैं।

जैसे जैसे अलम नजदीक आता गया, पता चला अब्बास नहीं आया, हुसैन अलम लेके आए हैं। अजादारो हुसैन आ गए, छोटे छोटे बच्चों को तलकीन की, अजादारो आपको पता है हजरत अब्बास कौन है? यही बात मुख्तार के दरबार में थी। मुख्तार ने किसी को पकड़ा और कहा ऐ शकी तू बता आशूर के दिन तूने क्या देखा है? कहा मुख्तार एक काम ऐसा था जो हमसे नहीं हो सका। कहा क्या काम था? कहा जब हमें हुक्म दिया गया ना कि शहीदों के सर को कलम किया जाए, उसमें से एक सर ऐसा था कि हमने जब जब उसको नेजे पे रखा वो सर खुद ब खुद गिर जाता था। आखिरकार फैसला किया गया कि उस सर को एक घोड़े की गर्दन में बांधा जाए। मुख्तार हम करबला से निकले, कूफे तक गए, रास्ते में घोड़े दौड़ते गए और सर पामाल होता रहा। मुख्तार ने पूछा ऐ जालिम बताइए किसका सर था? कहा अब्बास इब्ने अला लअनतुल्लाह अलकौम अज़्ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَا تَمَحْسَيْنَ

पास वफाओं का पैकर है, अब्बास जलाल हैदर है। हर दिल में धड़कता हर दिल में धड़कता है गाजी अब्बास का चर्चा घर घर है। अब्बास

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: मेरी बेटी की जान बचाई, इसकी जान बख्श दी।
2: मेरा बाप और भाई मुझे शाम की बहू बनाना चाहते हैं। बाजार के सामान की तरह मुझे पेश किया गया। यह है मेरा बाप और बनी उमैया की गैरत। देखना चाह रही थी कि तुम अलवे गैरत रखते हो तो क्या करोगे और देख लिया।
1: क्या तुम बासित की जगह लेना चाहते थे?
3: जो जहन्नम मेरे लिए बनाई है बासित के हाल से बेहतर नहीं है।
1: हैफ है तुम्हारी जवानी पर जो बुजुर्गों के सियासत के खेल में जाया हो रही है।
4: तुम्हारी माँ से सुना है नामोस के सिलसिले में अली से ज्यादा कोई गयूर नहीं था। अब जब मुसलमानों की नामोस तुम्हारी पनाह में आई है तो तुम ऐसा कर रहे हो?
3: आया हूँ ताकि चादर से पैर बाहर निकालूं और तुम्हारी बेटी का हाथ मांगूं।
1: मैं नायला के साथ उसके निकाह के लिए राजी हूँ।
3: तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारे इश्क में शियाने अली का खून बहाऊंगा?
2: मेरा फैसला वही है, या मुझे निकाह की इजाजत दे बगैर किसी शर्त के, या मैं वो करूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए।
4: क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें दूल्हा देखने की आरजू एक उम्र से मेरे दिल में बसी है?
3: अगर तुम उनके नाम और नमक को हराम नहीं समझती, तुम्हारा हुक्म सराख होगा। मुझे तन्हा ना छोड़ो।

0: खुशामदीद भाईजान, तशरीफ लाइए। आइए और देखिए क्या बंदोबस्त किया आपके लिए। हकीकतन आप इसके लायक हैं।
1: ढोल ताशे बजाओ, दूल्हा आ गया है।

0: देख रही हो ना तुम?
1: आखिरी बार पता नहीं कब जनाब औहद का रक्स देखा था, आज तो जनाब बहुत ज्यादा खुश हैं। लगता है इन्हीं के कुप्पे के रईस हैं।
0: इस घराने की नौकरानियों के लिए खुशी और गम में कोई फर्क नहीं है। साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, बस।
1: समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे आ गई। एक तरफ तो वो गुस्सा और बेइज्जती करना और दूसरी तरफ ये इज्जत और एहतराम।
2: पुतला बन गए

0: फिर से शादी क्यों नहीं कर लेती? नायला जो अजादार थी शादी कर रही है, तुम तो माली तौर पे जरूरतमंद भी हो।
1: इस घराने की नौकरानियों के लिए क्या खुशी और क्या गम, कोई फर्क नहीं है।
0: कहाँ, दुआ करती हूँ कि रहती दुनिया तक खुदा इस घर के लोगों का साया हमारे सरों पर बाकी रखे।
2: आप बस भी करो, मेहमान नवाजी का सामान देकर नायला के पास जाओ।
3: ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। खानम जान, चेहरा छिपा लीजिए, पूरे शहर का दिल चुरा चुकी हैं।
2: बस करो, नायला के पास जाओ।

0: काम था मुझसे।
1: अकेले में दम घुट रहा है, अब बस भी करो, जितना हो गया वो काफी है। कहीं देखा है कि सूरज को सजाया जा रहा हो? जब तक मेरे पास हो मुझे याद रहेगा कि क्यों घर और घराने से दूर दूल्हे के जोड़े में यहाँ पे हूँ। जब नजरों से ओझल हो जाती हो तो डर और परेशानी मुझे घेरने लगती है, उस वक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आता।
0: तुम्हारी बहन आने को तैयार नहीं हुई? ये जो तुम्हारे हाथ में है, क्या वो तुम मेरे लिए लाए हो?
1: डर था कि कहीं नजर न लग जाए, जबकि मैं पर्दे के पीछे से देख रहा हूं, मगर मेरा डर बढ़ गया है।

0: तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए।
1: अरे माशाल्लाह,
0: दुल्हन का चेहरा देखने के अपने आदाब है बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा देख लिया?
1: नहीं।
2: जनाब आहद और नईम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम खवातीन के दरमियान हो। अंधेरे में लड़की का चेहरा देखने के लिए कमरा तैयार नहीं किया अभी। अभी जाओ यहाँ से।
3: माफ कीजिएगा।
2: चेहरा देखो जरा।
0: माशाल्लाह,
2: तुम इससे भी ज्यादा काबिल और खूबसूरत हो। लेकिन अगर तुम्हारा दिल आ गया है तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारी मर्जी वही होगा। बस मुझे इत्मीनान दिला दो, वाकई उसे चाहती हो अपने पूरे दिल से।
1: पूरे दिल से? खानम जान, जनाब औहद को आपसे काम है।
2: अभी आ रही।

0: क्या करूं मेरे बच्चे, जाऊं या ना जाऊं? मेरा दिल खून का प्याला हो गया है बेटा। मुसीबत में फंसी अपनी माँ के लिए दुआ करो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा।
1: मैंने नहा लिया।
0: सलाला, 100 मर्तबा तुमसे कहा है कि अपना सर धोने से पहले मुझे बुला लिया करो। देखो इसे, अभी भी वैसे ही हो जैसे नहाने से पहले थी। सुनो, फिर से आप गली में मत चली जाना, थोड़ी देर तो साफ सुथरी बनी रहो।
2: चुप भी करोगी आया? बच्ची के साथ इस तरह सख्ती से पेश आना बंद करो। इसके लिए इतनी मुसीबत काफी है कि अपने बाबा से दूर है। आहिया माँ बन चुकी हो, सख्ती झेलो, मुसीबत सहो और सब्र करो।
0: अगर कुछ कह रही हो तो, मुसीबत सहने और सब्र करने की ताकत भी है हिलाल की माँ।
2: अब क्या किया है?
3: बहुत मुबारक हो बेटा।

0: मुस्कुराओ मुस्कुराओ लड़की की, अच्छा शिकार फंसा रखा है और अभी तक इससे अनजान हो। हमारा कमांडर दामाद लग रहा है ज्यादा खुश नहीं है।
1: इत्तेफाकन इसका उल्टा है। बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर रख दी है। हिलाल को अपना दामाद बनाना आसान नहीं है। जो बेटी उसे दी है बड़े नाजों से पाला है, सुकून और चैन के अलावा कुछ नहीं देखा। अगर देखा होगा तो मेरी क्या हैसियत। एक तरफ तुम और एक तरफ ये नाजों की पली हुई। तुम्हारी मर्दानगी और शुजाअत का शोर कूफे के चप्पे चप्पे में है, मगर यहां से काम और मुश्किल और तुम्हारा बोझ और भारी होगा। बजाएं।
2: मुबारक हो दोनों को।

0: नहीं तलमा नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो?
1: क्या
0: तलमा कहाँ है? हर जगह मैंने उसे ढूंढा लेकिन मुझे नजर ही नहीं आ रही।
1: अपने सफर का बहाना करके नहीं आई?
0: क्या मतलब, उसका सफर आज रात थोड़ी ना था।
1: मुझे क्या पता, आप जाइए खुश रहिए,
2: ये लीजिए।
1: आज रात आपकी बेटी की रात है, तलमा की बेटी।
0: दिल खोल के पीजिए।
3: बहुत ही ठंडा और मजेदार है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मेरी जन्नती हूर इन जहन्नमियों के बीच ना रहो।
0: उस लड़की के घर से यहाँ तक पहुँचने की

0: कभी ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई रहे और कोई ना रहे? पता है आपको, पूरी दुनिया की खजानों में से एक बहू और दो पोते थे, वो भी नहीं आए।
1: नहीं आए?
0: सफर का बहाना बना रखा है।
1: मैंने हुक्म दिया था सबको रहना है, पता नहीं वो खुद बहरी है या नहीं।
2: अलवान, अलवान,

0: लगता है जनाब का मुंह सीधा नहीं होने वाला। कल सवेरा होने से पहले निकलते वक्त घर के अंधेरे में ये मत कहना कि मेरा फला कपड़ा और टोपी कहाँ रह गई है, मिल नहीं रही। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जवाब दो।
1: नहीं। आज फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही होगी। बहुत बुरी हो माँ, काश मुझे पापा के साथ जाने देती।
0: ये पहन, दिमाग खराब कर दिया है आतिफ। कितनी बार कहूँ, बच्चा वहीं जाता है जहाँ उसकी माँ होती है। देख नहीं रहे हो क्या कि कितना काम पड़ा है? जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे रात में जाके दुल्हन को देख लेना। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो?
1: नहीं पहनूंगा मैं।
0: आखिर क्यों?
1: क्योंकि इसे दादा ने खरीदा है।
0: आखिरी बार बड़ों की बुराई करते हुए सुनूं, समझे?
1: अच्छा है कि आज की रात ही यहाँ से चले जाएं।
0: हमेशा के लिए थोड़े जा रहे हैं, वापस आएंगे।
2: रुको, मेरे बाबा ने हुक्म दिया है जल्दी से तीनों शादी में पहुंचो।
0: इससे पहले हुक्म दिया था कि तलमा उनके घर में कदम न रखे। ये पुरानी दुल्हन किस हुक्म पे अमल करे?
2: बगैर एक लफ्ज बोले चलो। कहाँ? नईम की बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं हो। अपने कपड़े बदल लो तब चलते हैं। वही कपड़े पहनना जो शाम में यजीद की दावत में पहने थे। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यजीद खुद तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम्हें देख रहा था। सुन लिया ना क्या कहा? जाओ पहनो।
1: बाबा ये कपड़े अच्छे हैं ना?
2: बहुत अच्छे।
3: शामिल, मेरी आंखें राह देखती रह गई, कहाँ थी आप? जैसे ही उसे देखा तुम याद आ गई। एक लाल गुलाब की तरह नईम के कमरे में थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। जाओ देखो मेरी बेटी कैसी लग रही है आज। हाँ खुशामदीद, इंतजार ही कर रही थी।
0: सच में क्या जोड़ी बनाई है लड़की। काश कि तुम्हारी थोड़ी सी अक्ल मेरे पास होती। कोई तुम्हारे मंसूबे को समझ नहीं सकता।
3: मैं
0: यजीद के चंगुल से निकलकर कूफा के कमांडर के पहलू में आ गई, कमाल है। इसे सोने में भी तोलो फिर भी कम है। कम है ऐसे मर्द जो अपने आप को किसी लड़की पे कुर्बान कर देते हैं। मुबारक हो तुम्हें।

0: माफ कीजिएगा भाई, बस इतना ही बचा है। ईद मुबारक।
1: आपको भी मुबारक हो। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: सलाम।
0: सलाम बहन। गोश्त तो है नहीं, अगर जिंदा दुम्बा चाहिए तो ले सकती हो।
2: नहीं चाहिए, रहने दीजिए आप। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज। बेटी सुनो, दुकान समेट लो।

0: असलम फिर घास भूसा दरवाजे पर डाल दिया है। समेट कर दरवाजा खोल दो, इन बेजबानों को अंदर भेज दो। बहुत अच्छा किया कि आज आ गई। तुम्हारी आज की मदद ना होती तो उसका आधा भी नहीं बेच पाते।
1: घर में तो कुछ करने को था नहीं, मगर ऐसा लग रहा है आप बहुत मसरूफ हैं बाबा। सामिया का घर, नजर का गोश्त और उसके बाद पुराने रिश्तेदार जनाब औहद।
0: तुम फिर से ताना दे रही हो।
1: मैंने पता नहीं क्या किया था जो रिश्तेदारी भूल गए और हम दोनों को बुलाया तक नहीं उन लोगों ने। ऐसा भी हमने क्या कर दिया?
0: कब से नजर खाने के लिए दावत की जरूरत पड़ने लगी? हाँ
1: आपको भी मदऊ नहीं किया ना?
0: क्या कह रही हो, कौन सी दावत, कहाँ?
1: सामिया के बेटे और औहद की बेटी का निकाह, हिलाल और नायला। ख्वाब में भी देख सकते थे ये दोनों खानदान रिश्तेदार बन जाएंगे।
0: क्या बकवास कर रही हो तुम?
1: पूरी जिंदगी मेरी माँ के रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया, हमारा आना जाना तक हराम कर दिया था। आज सबसे पक्की शिया अली के दुश्मनों से बेटी ले रही है, अजीब नहीं लगता?
0: यकीन है तुम्हें? मैं वहां था, ना उसकी माँ सामिया ने कुछ कहा ना उसकी बहन ने।

0: हिरन का शिकार कर लिया कमांडर?
1: देर कर दिया आने में।
2: खुशामदीद।
1: खुशामदीद।
2: खुशामदीद।
0: अभी भी मेरी नाराजगी बाकी है, मगर घर पे भी नहीं रह सकती। डर रही थी यही एक शादी करो और मैं ना आ सकूं। इस हुस्न पे कुर्बान जाओ। माशाल्लाह।
1: खुशामदीद।
0: सच में हिलाल, हमारी छोड़ो, कम से कम सब्र करते बासित रिहा हो जाता तो जरूर आता, और तुम इस तरह तन्हा और अकेले बिल्कुल नहीं रहते।
1: अगर उस लड़की की परेशानियां ना होती तो मैं कहां और ये बेवक्त शादी का। देख रही हूं, डर रहा हूं कि अपने शौहर के अधूरे काम को पूरा ना कर दे।
0: खुदा ना करे, फिक्र मत करो, मेरा ध्यान उस पर है।
3: जनाब औहद बात करना चाहते हैं, आप घर में तशरीफ लाए।
4: इस रिश्ते के बाद हिलाल मेरे लिए दूसरा बेटा होगा। आज रात की मुनासिबत से एक तोहफा लाया हूं कि इस जैसा पूरे कूफा और शाम में नहीं। ये मेरे घर का सबसे प्यारा तोहफा है, इसे घर वालों के भरोसे पर तुम्हें सौंप रहा हूं।
5: यह तो जाहिर है कि खुदा ने किस्मत बांटते हुए इस कमांडर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी।
0: खुदा अली के शिया की हिफाजत करे, जो फिर से खुशी और हंसी को तुम्हारे घर वापस लाया है।
4: हिफाजत करेगा, बजाइए।

0: इब्ने हुरैस, जाम किसके हाथों से लिया जिसने इतना मस्त कर दिया?
1: तुमने मुझसे एक वादा किया था।
0: होश में नहीं हूं, दामाद अरबियों में से।
1: रुकिए जनाब औहद, आप तो कूफे में माविया के कातिब और चुने हुए आदमी हैं, तो फिर कैसे इकलौती बेटी को एक ऐसे घराने की बहू बना रहे हैं जिसका हर एक फर्द अली के नाम पे जान देता है?
2: इब्ने हुरैस, क्या हम में और अलवियों में ये पहली शादी है? बोलो।
1: नहीं।
2: तो फिर मुंह मीठा करो।
1: तुमने उसके बाप को सिफीन में कत्ल किया। उस नए दामाद की जाती दुश्मनी के बावजूद बैठो और अपनी बेटी की खुशी का इंतजार करो।
0: इब्ने हारिस, चलिए।
1: तुम अली को नहीं मानते, कैसे इनके साथ रिश्तेदारी बनाने पे तैयार हुए हो?
0: चलो जरा हवा खाने।
2: क्या ये पहली शादी है हम में और अलवियों के दरमियान? बताओ तुम लोग,
0: तो फिर मुंह मीठा करो।
3: सब्र करो,
2: सब जानते हैं
3: जिस दिन से इस कपड़े को पहन रखा उसके बाद से इस बात को भूल चुके।
2: इख्तिलाफात बहुत है।
3: सुनो और गुजर जाओ।
2: जिंदगी तकदीर का खेल है और अल्लाह के फजल व करम से हिलाल उससे कामयाब निकला है। आ जाओ।

0: काश उसे यहाँ ना बुलाया होता, वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है।
1: अपनी मर्दानगी को साबित करने का वक्त आ गया है हिलाल, वरना जिस शोर की आवाज सुन रहे हो शाम तक जाएगी और हमें बर्बाद कर देगी।
2: लोगों की बकवास तो कभी खत्म नहीं होगी, अगर फिर भी जैसा आप हुक्म करें।
1: मेरे मौला वली नेमत के तरीके से खड़े होकर बुलंद आवाज में अली पे खूब लानत भेजो।
2: क्या करूं?
1: अली पे लानत भेजो।
2: अपने मौला पे लानत करूं? नहीं, आपने अपनी बेटी को ऐसे शख्स को दिया है जो कभी जुल्म नहीं करता। मेरे मौला अली को गलत कहना मुझ जैसे के लिए खुला हुआ जुल्म है।
1: तुमने कहा था कि नायला से शादी करने की शर्त अपने खानदान से बेजारी, बनी उमैया की रस्मों पर अमल करना है। तुमने मान लिया? नहीं माना?
2: मेरा खानदान अली को मानने वाला है, मगर मेरे और मौला के दरमियान वही निस्बत है जो अब्द और परवरदिगार के दरमियान है। मुहाल है मैं ऐसा करूं।
1: उसी अली की कसम जिसे खुदा की जगह पर रख दिया गया है, अगर इस शर्त को पूरा नहीं करोगे, इस शादी की हसरत तुम्हारे दिल में बाकी रह जाएगी। इस शादी की चमक धमक को मत देखो। अलग चमकते ही सब बर्बाद कर दूंगा।
0: सलाम।
1: सलाम। वालेकुम सलाम। माजिद, माजिद।
3: ज़ुबैदा, हमारे लिए शरबत लाओ।
0: जी जरूर।

0: और बाबा के बीच कोई शर्त थी और मुझे नहीं बताया।
1: तुम्हारे बाबा की शर्त अली को लानत करने की नहीं थी।
0: तब क्यों चुप थे और कुछ क्यों नहीं बोले?

0: और बाबा के बीच कोई शर्त थी और मुझे नहीं बताया।
1: तुम्हारे बाबा की शर्त अली को लानत करने की नहीं थी।
0: तब क्यों चुप थे और कुछ क्यों नहीं बोले?
1: गलत आदमी को चुना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मौला अली को गलत कहना मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे बाप ने जो कहा इसे ऐसी कपकपी मुझ में तारी हो गई है जो मर्दों की शान के खिलाफ है।
0: जब शादी के लिए राजी हुए थे उस वक्त मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में थी या नहीं? अगर नहीं तो अब इस तरह खौफ का चेहरे पर आना किसी मर्द या आशिक के लिए मुनासिब नहीं। और अगर मुझ पर रहम खाकर खुदा के लिए शादी पर राजी हुए हो तो इसी बात का गुमान था जो अभी हो रहा है। तकिया कर लो, आज अली के जाने वाले कबीले के एक लड़के की गैरत नाइला की आस है। उनके दरमियान जिन्हें तुमने देख ही लिया है कैसे मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मुझे अकेला मत छोड़ना। हेला, पीछे हटोगे तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। तुम्हारे इस दरवाजे से जाते ही कहानी पलट दूंगी, देख लेना। इससे पहले कि कोई और मेरी जान का दुश्मन बने, खुद ही अपनी जान दे दूंगी।

0: jenes auf mich. कोई जाने न जाने मगर आप जानते हैं कि अगर मैं यहां हूं और इस शादी पर राजी हुआ हूं तो यह आपके लिए था। अगर अपने खानदान को पीछे छोड़कर आपकी दुश्मन की बेटी को बदबख्ती और मौत से निकालने चला हूं तो आपकी रिजायत के लिए था। क्यों मेरा हाथ नहीं थाम रहे? मुश्किल को शाही कीजिए आका, मुझे अकेला ना छोड़िए।
1: तलवार के रक्स का वक्त आ गया।

0: आप ये लीजिए बाबा, हमारी दुकान का भी ध्यान रखिएगा। चलता
1: हूं। जरूर।
2: एक बार फिर से कहो, क्या बोला उसने?
3: वही एक जुमला, डरी और सहमी हुई थी, कह रही थी आपकी बहन है।
2: कोई उसके साथ नहीं था, कोई कनीज, खुदामा,
3: कोई भी नहीं।

तय पाया कि जनाब औहद के कमरे में आपका इंतजार करें, तशरीफ लाइए। आइए।

बहन की जान, खुश आमदीद, बगैर बताए आ गई। लानत हो इन शामियों पर जो फिर तुम्हें आंसुओं से भरी आंखों के साथ वापस भेज दिया। बहन देखूं तो जरा। अगर तुम्हारे नाकारा शौहर के बजाय तुम्हें नायला को मारने के लिए भेजा होता तो ऐसा ना होता।

0: मुझे तुमने बीच में क्यों रखा? ससुर और बहू के झगड़े में मुझसे क्या मतलब?
1: बेहतरों का मुंह बंद रखो।
0: खुदा की लानत हो इस खानदान पर।
1: तुम काम कर चुकी हो, उजरत भी ले चुकी हो, अब तुम जा सकती हो।
0: अपना हाथ हटाओ। मेरा काम लोगों की जान लेना नहीं, ये तुम और तुम्हारे खानदान का काम है।
1: खुदा का शुक्र करना चाहिए, तुम और तुम्हारे बच्चे अब तक जिंदा हैं।

0: बोलो बेटा बोलो।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खुदा की लानत हो।
0: वाह वाह, महफिल की असल मलिका भी आ गई। खुशामदीद हिलाल की मां।

मुबारक हो। जो भी है खुदा का हुक्म और उसके रसूल की सुन्नत है। मुबारक हो इंशाल्लाह। हिलाल की माँ की तरफ से तोहफा दुल्हन के लिए, ताकि उसके खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अब और आपकी खुशियों के दरमियान नहीं आऊंगी। जनाब अहद, अभी तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, मगर ये जान लीजिए कि सामिया ने इस घर को बेटा नहीं दिया, बल्कि इस घर से बेटी ली है।

0: यकीन मानो तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। जो भी किया बनी उमैया की रस्मों में से था।
1: कौन सा ये निकाह उसूलों के साथ हुआ था जो रस्मों को निभाया गया?
0: सही कह रहे हो, किसी ऐसे पे लानत करना जिसे जिंदगी भर चाह है आसान नहीं है, वो भी शादी के बीच। ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम्हारी माँ कुछ ऐसा करेंगी। इज्जत रख ली। हिलान,
1: हाँ।
0: जिस माँ को मैंने देखा, कतई रहम तो बहुत दूर की बात है, बल्कि तमाम मसाइल को कबूल कर लिया ताकि तुम्हारी तरफ से कहीं कोई कमी ना रह जाए। चलो कल तुम्हारे घर चलते हैं और शुक्रिया के बहाने तुम्हारी माँ से भी मिल लेते हैं, ठीक है?

0: कहाँ चलती है? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि टूटे हुए दांतों से खाने का मजा नहीं लिया जाता।
1: पहचाना नहीं तुम्हें।
0: खाक हो तुम पर हिलाल, बहुत खराब सौदा करने लगे हो। तीन बेचकर बीवी लाए हो।
1: अली का दम भरते और मेरी नामोस का रास्ता रोकते हो।
0: तुम्हारी बीवी के रास्ते में नहीं आ रहा है, रास्ता खुला है, चले जाओ तुम।
1: किनारे।
2: पहले तुम जाओ, अगर सब ठीक रहा तो मुझे बुला लेना।

0: सलाम।
1: सलाम।
2: कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों रो रही हो?
1: कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, जैसे मैं इंसान हुई नहीं, मुझे रुलाते रहते। आप कौन है?
2: मैं मेहमान हूँ।
1: मेहमान?
2: हिलाल की बीवी, पहचानती हो उसे?
1: तो इसका मतलब कि आप ही दुल्हन है। कितनी खूबसूरत है आप। मैंने अम्मी से बात की है, बड़े होकर मैं भी ना शादी करूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। मगर मामू से नाराज हूँ मैं, अपनी शादी की हमें कोई खबर ही नहीं थी, मगर आपसे नहीं।
2: सलाम।
3: सलाम। यहाँ क्यों, अंदर आओ। आओ आओ, खुशामदीद प्यारी दुल्हन, तशरीफ लाओ।
2: मैं माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए।
3: कैसी मुजाहिमत, कल से तुम भी इस घर के लोगों में से हो। तशरीफ लाओ बहू, अंदर चलो।
4: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
3: ये आप ही का घर है मेरी बहू, तशरीफ लाइए।
4: अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
3: तशरीफ लाइए।
4: सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अशहदु अन्ना अलैया वलीउल्लाह व अशहदु अन्ना अलैया हुज्जतुल्लाह। हय्यालस्सला हय्यालस्सला हय्याल फला हय्याल फला। हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। कद कामतिस्सला कद कामतिस्सला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुबारक।

0: खुशकिस्मत है ये घर जिसमें दो मेहमान हैं जिनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा अजीज है। खुश आमदीद, आपसे मुलाकात करके खुशी हुई हिलाल।
1: शुक्रिया। माँ की जान, कितना खूबसूरत है।
2: आप ज्यादा खूबसूरत है
1: प्यारी बच्ची।
3: रात आपके गायब होने की वजह ये जनाब थे।
0: इंशाल्लाह तुम्हारे दामन भरने का वक्त भी आएगा।
3: किस्मत उसके मामू पे गई है। कुछ हुआ है क्या?
1: हिलाल, तुमने अली को बुरा कहा है। तुमने इस जबान से अली पर लानत की है।
3: नहीं की है।
1: बेटा और नई दुल्हन दोनों मुबारक हो। खुदा करे कि इस घर में हंसी खुशी के अलावा कुछ ना हो। फिर भी अगर किसी काम की जरूरत हो तो याद कीजिएगा।
4: शुक्रिया आने का।
5: देखा कैसे सारी खूबसूरती जिबाई एक ही जिस्म में सिमट गई है। नाम क्या है इसका?
1: अली।
5: के बाप की कमी पूरी हो जाए, इंशाल्लाह वापस आ जाए और तुम्हारे गमों का बोझ हल्का हो जाए।

0: खुदा तुम्हें दुगनी ताकत अता करे, नवासे को संभालना, बहू को संभालना।
1: खुदा का शुक्र है कि रहमत का दरवाजा इस घर पे खुल गया।
0: खुदा का शुक्र है।
2: हिलाल, हिलाल, भाई तुम्हें खुदा की कसम, उस देव से दूर रहो जो किसी को भी मारने से नहीं डरता।
0: वो क्या है?
2: तलमा, रहीम की बीवी को मार दिया।
3: किसने मारा, सही से बताओ, पता तो चले।
2: कल हमल के दर्द की वजह से शादी से नहीं निकली थी। वालिया का तिजारत खाने तक पीछा किया। वहां अपने कानों से सुना वो कह रही थी कि तलमा को मार दिया।
1: क्यों ये बच्चा रो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अपनी दुल्हन को अकेला छोड़ आए हो और यहाँ जोर जोर से कानाफूसी कर रहे हो? ये अदब के खिलाफ है, न जाने क्या सोचेगी।

अपने आप को रोक रहा हूं, वरना जहन्नम वाला बापू अगर मजलिस पढ़ रहा हो और बात जहन्नम की आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप पे कंट्रोल करना। खैर, तो अब इंसानों की दो कैटेगरी कुरान ने बताई, दोनों अल्लाह से मांग रहे हैं। शैतान के आगे किसी ने हाथ नहीं फैलाया, नमरूद और फिरौन के आगे हाथ नहीं फैलाया अल्लाह से। एक ने सब कुछ दुनिया का मांगा, एक ने दुनिया भी मांगी और आखिरत भी। और उसके बाद फिर कुरान करीम ने एक तीसरी कैटेगरी बताई है, वही आज़र में हमारा सब्जेक्ट बनेगा। आज 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम ये, और जो इस्लाम पर अमल करने में भी रुकावट है, कि दुनिया इतनी मादी हो गई है, बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, शायद इंग्लिश में इसको मेटेरियलिस्टिक कहते हैं, कि हर चीज़ को इंसान जज करता है इस बात से कि इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा दुनिया का। हर चीज़ में कमर्शियलिज्म आ गया। चुनाचे ये जो एक जुमला है, अगरचे ये पुराना है, 21st सेंचुरी का नहीं है, लेकिन बहरहाल मेंटेलिटी वही है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ये वही चीज़ है कि हर जो काम भी करे आदमी सोचता है कि इसके बदले में मुझे दुनिया में क्या मिलेगा। शद्दाद का भी हजरत हूद से जो एक डिबेट या मुनाजरा या मुकालिमा हुआ वो यही था। हजरत हूद अल्लाह के वो नबी हैं कि जिनकी कब्र या वादी सलाम में है, दो ही नबी है ना वादी सलाम, और या फिर मक्के के अंदर खाने काबा के सहन में है। ये बातों की तफसील तो छोड़ें, शॉर्ट में भी बयान करने का वक्त नहीं। बहुत अहम नबी हैं हजरत हूद, शद्दाद ने यही कहा कि अगर मैं आपके अल्लाह को मान भी लूँ तो मुझे मिलेगा क्या, और फिर आपको पूरा वाकया मालूम है। तो ये 21st सेंचुरी में घूम के चीज़ आ गई, तिलकल अय्यामो नुदावेलोहा बैना नास, कुरान की आयत। और ये आयत पहले इरादा था कि आज की मजलिस का इसको भी सब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन अब मैं लग रहा देख रहा हूँ कि मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैंने सुना कि कोई फुटबॉल का मैच भी हो रहा, इस एतबार से ये आयत मुझे तिलावत करना थी, इसमें एक मैसेज है। लेकिन चलें आज छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मैच वाले हैं वो तो मैच देख रहे होंगे, तो उनको ये मैसेज देने का आज फ़ायदा नहीं है, कल भी तो एक आएगी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। तो कुरान कह रहा है कि दुनिया में नया ज़माना कोई नहीं होता, वही ज़माना है जो घूम फिर के आता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब यह कि थोड़ा सा रिफाइन फॉर्म हो जाती है, कोई एडवांस फॉर्म हो जाती है, लेकिन होता वही। अगर आज इस किस्म की चीज़ें जो इबादतों में रुकावट डालती हैं मैच, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है ना, ये तो मुआविया की पॉलिसी थी। वो जो हाथी लेकर आया था, तो वो इसीलिए तो हाथी लेकर आया था, वही चीज़ ठीक है, तरीका अलग है, उसके पास हाथी था, आज के बाद फुटबॉल का मैच है, लेकिन बात वही थी। अब ये सारी चीज़ें मैं बहुत इशारों में इसलिए कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, और इंशाल्लाह जिंदा रहा तो कल ये बात करूंगा। मुझे आना है आज की रात आका अब्बास के हवाले से वो दो मैसेज जो 21st सेंचुरी में इस्लाम पर प्रैक्टिस करने में हमारे लिए हर्डल है। तो देयर इज़ नो फ्री लंच, इस्लाम में तसव्वुर नहीं। और ये बार बार हमें कहा गया कि हर चीज़ को इस तरह से जज ना करो कि इसके बदले में तुम्हें क्या मिले दुनिया में। अब इतना कमर्शलिज़म है कि अभी भी मैं घर की एक मजलिस पढ़ रहा था, उसमें मैंने बात कही थी लास्ट ईयर, कई जगह कही थी ये बात, कि इवन हज इतना कमर्शलाइज हो गया है, हज हिजाब इतना कमर्शलाइज हो गया, और बहुत ही सेंसिटिव इशू लेकिन है, आज़ादारी इतनी कमर्शलाइज हो गई है, ये सारी चीज़ें, ये वही देयर इज़ नो फ्री लंच वाला कंसेप्ट है। और इस्लाम कहता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ दुनिया में मिले, बल्कि आखिरत वाली चीज़। अब ये जब इस्लाम पे प्रैक्टिस करेंगे ना 21st सेंचुरी में, तो वही हमारे बच्चे बार बार सवाल करेंगे, सारी दुनिया जो है वो एंटरटेनमेंट में लगी, हम ये चीज़ें क्यों छोड़ें। जब तक कि आखिरत तुम्हारी फोकस में है, हमारे पास इसके लिए बहुत ही अहम कुछ हदीसें हैं, टाइम नहीं है, लेकिन एक मुख्तसर, एक दो तीन बहुत मुख्तसर चीज़। नंबर एक, ये एक हदीस है ना, बाद लोग तो कहते हैं ये शहजादी के हवाले से है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार, बहुत ही पायस औरत थी, और अल्लाह की बहुत इबादत करती थी, लेकिन उसके घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, फाके थे, तो बार बार वो ये अल्लाह से कहती है कि अल्लाह फलां फलां फलां, वो शराब पीता है, वो गुनाह करता है, वो हराम खाता है, वो तेरे हुक्म को तोड़ता है, उसको तो इतना मिल रहा है।

और मेरे पास कुछ भी नहीं। अब बाद उलमा ने लिखा है कि ये एक आबिद था, बाद ने लिखा एक औरत थी, और एक जुमला मैंने वो कह दिया जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि बाद ने कुछ और ही लिखा है जिसको मैं नहीं मानता हूं। तो खैर, आए अल्लाह मैं इतनी इबादत कर रहा हूं या कर रही हूं, इसके बदले में मुझे कम अज़ कम ज़िंदगी तो बेहतर गुजरे। अब दुआ में जब आदमी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करता है, टाइम कहीं कम ना हो जाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ, तो आंखें बंद हो जाती हैं, हाथ उठे, एकदम से लगा उसे मेरे हाथ पे कोई चीज़ आ गई। बहुत अहम हदीस है ये, आँख खोल के देखी तो एक बहुत ही कीमती मोती या हीरा या जो भी, वो समझ गई अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है, या समझ गया, चले मैं मर्द का लफ्ज इस्तेमाल करूँ, तो समझ गया बाजार में जाके बेचना है इसको कल रात, कल दिन, अभी तो रात का वक्त, दुआ मांग रहा है ना, अब दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई, सेटिस्फेक्शन हुआ, नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ, और जन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत मेरा महल मुझे दिया गया। मैं सारी डिटेल्स को डिलीट कर रहा हूँ। महल के अंदर गया, बहुत ही खूबसूरत महल है, लेकिन देखा महल के अंदर वो पूरा महल मोतियों से बना हुआ है, लेकिन एक जगह से मोती गायब। अब वो दीवार है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन एक ब्रिक वहाँ पे ना हो या जो चीज़ें लगाई जाती, पूरा महल जो है बदसूरत होकर रह गया। कहा खुदाबंदा ये तूने महल बनाया और उसके अंदर ये कमी कैसे आ गई? कहा कमी नहीं है, ये तूने दुनिया में जल्दी करके मांग लिया था, हमने तुम्हें वहाँ दे दिया। कहा नहीं चाहिए खुदाबंदा, मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो वाकया कि मोती किस तरह वापस चला गया। अच्छा, ये मासूम की बहुत मशहूर तो नहीं कहूँगा, बहुत अहम हदीस। एक मरतबा किसी मर्द ने जाके कंप्लेन की, देखिए अमूमन लेडीज कंप्लेन करती हैं कि आप लोग जब मजलिस पढ़ते हैं तो सारा आपका टारगेट औरतें होती, फायरिंग स्क्वाड के सामने औरतों को खड़ा करके ढस ढस ढस ढस ढस ढस जो है वो आप फायरिंग करते चले जाते हैं, लेकिन नहीं, दोनों पहले से होता है। तो एक मर्द ने कंप्लेन की छठे इमाम से कि मौला ये क्या बात है कि अल्लाह ने ये जो प्योर सिल्क है औरतों को तो इजाजत दे दी और हमारे लिए हराम कर दिया। इमाम ने कहा जो जवाब था, बहुत मुख्तसर मैं बात कर रहा हूँ, टाइम हाथ से निकल रहा है। इमाम ने फरमाया वो तुम्हारे ऊपर यहाँ हराम किया गया है इसलिए कि अल्लाह तुम्हें ये जन्नत में अता करना चाहता। यही जवाब एक मोमिन को इमाम ने प्योर गोल्ड के लिए दिया। मर्दों के लिए हराम पूछा क्यों? कहा इसलिए कि जन्नत में, अभी कुरान में भी है कि जो जेवरात जो ज्वेलरी मर्दों को जन्नत में पहनाई जाएगी का गोल्ड। तो वो वाला मैसेज। अब ये सारी हदीसें एक दिन में नहीं आई हैं, ये अलग अलग मौके पर आ रही हैं, तो बार बार इमाम ये चीज़ रिमाइंड करा रहे हैं कि ये मत समझो कि जो कुछ है वो दुनिया, बल्कि आखिरत भी एक है ना, वहाँ भी तो तुम्हें कुछ लेना है। बल्कि अब आइए, वो बहुत ही मुख्तसर वाकया मैं बहुत डिटेल से पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ नमाज मगरिबैन के टाइम की वजह से प्रॉब्लम होता है कि मजलिस ख़त्म करना है जल्दी, लेकिन उसके अंदर फिर अभी आ गया कि दुनिया में चाहिए आखिरत में चाहिए। अच्छा, अब अगर कोई आदमी कह दे, वो जो मोमिन था जिसे मोती मिल गया, वो कह दे कि नहीं मैं गुजारा कर लूंगा आखिरत में एक बगैर मोती के, यहाँ जिंदगी बेहतर हो जाए, तो आका हुसैन का एक जुमला, बहुत मशहूर जुमला है कि आका हुसैन ने अपने बच्चे के एक टीचर को, यहाँ पे खुद एक सवाल पैदा होता कि आका हुसैन के होते हुए आका का बेटा कहाँ जा रहा है तालीम हासिल करने, टीचर का लफ्ज आया कैसे? अब्दुलरहमान अबू सलमा, पूरा वाकया भी अबू सलमा अब्दुलरहमान, उसको इमाम ने खास फंक्शन किया और उसको बुलाया और लोगों से कहा कि इसने मेरे बच्चे को अलम का सूरा पढ़ाया और अलम का सूरा सिखाया, हुसैन से बेहतर टीचर कौन है? लेकिन वो एक इमाम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं ना कि हम और आप, हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह से कुरान सीखें, टाइम नहीं है, मैं कहीं और ना निकल जाऊं, बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। तो इमाम ने बुलाया, फंक्शन किया और उसको फिर इनामात दी, 1000 दीनार जो इस्लाम में ब्लड मनी, 100 ड्रेसेस, और फिर उसका मुंह मोतियों से भर दिया। लोगों ने कहा कि फरजंदे रसूल एक अलहम्द के सूरे पर, इमाम ने फरमाया कि फिर भी मैंने कम दिया, क्यों? अब देखिए वहां पे इमाम जो है ना वो लॉजिकल जवाब दे रहे हैं। इमाम फरमाते जो कुछ मैंने दिया ये इसके पास कितने अरसे रहेगा, 10 साल 20 साल 50 साल बस ना, लेकिन जो इसने मेरे बच्चों को सिखाया है ये इस बच्चे के साथ कब्र में भी जाएगा, कयामत में भी जाएगा, पूरे सिरात पर भी जाएगा और जन्नत में भी जाएगा। तो जो आखिरत वाला रिवार्ड, कहीं अलहम के सूरे के बेनिफिट, आपने ये रिवायत भी सुनी है ना कि एक बच्चे ने अलहम का सूरा पढ़ा तो उसके बाप पे से अजाब कब्र खत्म हो गया, हजरत ईसा का मशहूर वाकया। तो खुलासा यह कि बार बार ये मैसेज दिया जा रहा
मुझे

कि ये आपके लिए सुन लेना भी आसान है और आपके लिए इसको कबूल करना भी, एक्सेप्ट करना भी आसान। प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम उन बच्चों का है जो 21st सेंचुरी में पैदा हुए, जिनका एक स्पेशल किस्म का माइंड सेट बना दिया है वेस्ट के एजुकेशन सिस्टम ने। बात उनकी है तो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो तो यहाँ है भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें उनके हवाले से मुआविया के हाथी के रेफरेंस में कल होंगी। मुआविया का हाथी, अब तो हर एक को मालूम है ना, आप ज़ियारत पे जाते हैं मस्जिद कूफा में, आपको मुआविया का हाथी याद दिलाया जाता है, बहुत अहम वो मैसेज है, और इसीलिए मुख्तसर बयान करूंगा क्योंकि मशहूर हो गया। वापस आ जाइए, तो अब ये जो मसला कि पहला स्टेज है कि आपको खुद इस बात पे यकीन आ जाए कि जो कुछ भी इस्लाम के अहकाम है, रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसना, दुनिया में भी अच्छा मिले आखिरत में भी अच्छा मिले। लेकिन अगर कभी मसला ये हो जाए कि आप ऐसी जगह, क्या डिलेमा कहते हैं इंग्लिश में, कि क्या कहते हैं उर्दू में, बड़ा मुश्किल लफ्ज है मखमसा, तो कहना भी आपके लिए तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी मुश्किल होगा, यानी आदमी इस तरह फंस जाए कि या ये ले या वो ले। अगर दुनिया और आखिरत दोनों मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम यह है कि या दुनिया मिले या आखिरत मिले। अब जैसे हिजाब एक ऐसी ही चीज़ है, इससे ज्यादा आज हिजाब पर बात नहीं करूंगा, एक ऐसी ही चीज, तो अब मसला यह है कि फिर क्या लोगे। कहने को हर मोमिन कहेगा आखिरत लूंगा, लेकिन यही 21st सेंचुरी का मसला। उमर साथ का जुमला याद दिला दूं आपको, अगर ये जुमला भी कल आना चाहिए, क्योंकि जब हजरत अली अकबर मख्तल में गए थे तो आका ने एक बार नहीं दो बार उमर साथ से बात की थी, लेकिन उसका जुमला ये कि मेरे सामने एक तरफ दुनिया है या एक तरफ आखिरत, दुनिया में वही रह की गवर्नरी और आखिरत में अगर हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार, मगर दुनिया है नकद सामने, आखिरत है उधार बाद में। तो अब अकलमंद आदमी हमेशा नकद लेता है उधार छोड़ देता, ठीक है, लेकिन ये कब की बात है, ये 21st सेंचुरी। आप 21st सेंचुरी में, आजकल तो हर चीज क्रेडिट पे चलती है, बल्कि दुकानदार भी कैश बड़ी नागवारी से लेते हैं, हर चीज उनको क्रेडिट पे जाइए खैर। तो खुलासा ये है कि आखिरत और दुनिया में टकराव हो जाए तो आखिरत लेना, मगर इतना ईजी नहीं। अब्बास अलमदार यहां हमारे सामने आते हैं, करबला का एक अजीम मुजाहिद। मैं तो हैरान होता हूं कि दुनिया की तारीख में ऐसा कोई जर्नेल गुजरा है जिसने 72 की छोटी सी फौज को 30,000 के लश्कर के मुकाबले में लड़ाया और पूरा दिन, दे आधे घंटे के, ये करबला की जंग विद इन हाफ एन आवर खत्म हो जाना चाहिए थी। कहा 30,000 की फौज, ये 30,000 मैं कह रहा हूं जब सबसे मिनिमम फिगर यजीदी फौज का दिया गया, और आका हुसैन 72। तो अब जंग शुरू हो, 30,000 और 72, कितनी देर ये जंग चलनी चाहिए, जिसमें कितने ही ऐसे बूढ़े हैं जो 5 मिनट भी जंग नहीं कर सके, वो तो सिर्फ इसलिए आए थे कि उनको सवाब लेना है और जन्नत लेना। मगर ये अब्बास अलमदार, करबला का ऐसा बहादुर जर्नेल जिसने इस मुख्तसर सी फौज को पूरा लश्कर यजीद पूरा दिन गुजार दिया, वो भी उस वक्त के जब अब्बास को खुद तलवार चलाने की इजाजत नहीं मिली। मगर अब्बास की शजाअत और बहादुरी तो आप बहुत सुनते हैं और अब्बास की वफादारी बहुत सुनते हैं, और अब्बास के करबला ही के एक दिन के अंदर दो बहुत अहम मैसेज मिल रहे हैं। मैसेज नंबर 1, करबला में जो जवाना ने बनी हाशिम है, बनी हाशिम की फैमिली, उनमें और जनाब अब्बास, अच्छा ये पहला मैसेज है ना, इसी ये पहला मैसेज से ही दूसरा मैसेज निकलेगा, दोनों समझिए एक ही चीज है। मगर पहला मैसेज जनाब अब्बास ओनली, जवाना ने बनी हाशिम की बात कर रहा हूं, जो बनी हाशिम है, जो फैमिली है हुसैन, ओनली थे जिनके पास ऑप्शन था। देखिए मैंने एक हदीस मौला की पहली मजलिस में या दूसरी मजलिस में पढ़ी थी और मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, नहजुल बलागा के आखिर में मौला की हदीस है कि बाज लोगों की मजबूरी उनको मुत्तकी बना देती, वो इसलिए मुत्तकी बनते हैं कि उनके पास गुनाह का चांस नहीं होता। फिर मैंने उस वक्त जरा लाइटर मूड में कहा था कि अंधा आदमी अगर ना महरम को ना देखे और बहरा आदमी अगर गाने ना सुने और गूंगा आदमी अगर खिबत ना करे, यह एक ऐसा पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बिल्कुल अल्कोहल या ड्रिंकिंग मना कर दिया, वो कहे कि मैंने शराब छोड़ दी, हो सकता है इन सब की नियतें ठीक हो तो इस पर उनको सवाब मिलेगा, लेकिन असल कमाल वो है कि आपके पास गुनाह का चांस हो। अच्छा मौला की हदीस अपनी जगह, उर्दू में भी एक कहावत है, उर्दू में कहावत है मजबूरी का नाम सब्र। भाई कोई प्रॉब्लम आपके पास आ गया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो आपने कहा मैं सब्र कर रहा हूं, तवासौ बिल हक व तवासौ बिल

सब्र, सब्र इस्लाम की बहुत बड़ी क्वालिटी। मगर करबला वालों के पास मजबूरी का नाम सब्र नहीं था, उनके पास इख्तियार था, अगर हुसैन चाहते उसी लोग में कयामत आ सकती थी। मगर ये जरा सब्जेक्ट बदल रहा। अब्बास अलमदार इज द ओनली पर्सनैलिटी अमंग बनी हाशिम जिनके पास च्वाइस था कि वो जिहाद में रहें कि चले गए। बाकी तो वो थे कि हुसैन की औलाद और खानदान था, शायद असहाब इमाम को उमर साथ जाने देता, हुसैन और हुसैन के खानदान को नहीं, उनको शहीद होना ही होना। अब्बास के लिए आशूर की रात या आशूर की सुबह, कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ रहा हूं कि रिवायतों के अंदर डिटेल में जाऊं, ऑप्शन था, शिमर आया था एक अमाननामा लेकर और ये कहा था कि कहां है मेरे भांजे, झूठ बोल रहा है, मुझे आका अब्बास का शिमर से कोई रिश्ता नहीं, उम्मुल बनीन शिमर की कोई बहन नहीं है, हत्ता ये कि बहुत दूर के रिश्ते से भी, फर्स्ट कजिन सेकंड कजिन थर्ड कजिन से भी कोई बहन नहीं, क्योंकि अव्वल तो जो हमारे यहाँ किस अथेंटिक हदीसों से साबित कि ये जितने करबला में कातिलान इमाम थे ये सब हराम की औलाद थे, इनमें कोई भी हलाल ज्यादा नहीं थी। और हराम की औलाद याद रखिए उसका कोई रिश्ता किसी से नहीं बनता, चाहे कन्फर्म पता चले कि ये इसी बाप का बेटा है फिर भी वो हमारा भाई नहीं होगा, वो हमारी बहन नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, शिमर था हराम की औलाद लेकिन वो उस कबीले में था भी नहीं, वो तो सड़क पे पड़ा हुआ मिला था, कबीले वालों ने लाके उसको पाल दिया, लेकिन इस वक्त वो जनाब अब्बास की चूंकि सिंपैथीज लेना चाहता है तो उसी कबीले में वो पला बढ़ा है, एक तरह का एडॉप्ट किया कबीले वालों ने, तो कहाँ कहाँ है मेरे भांजे, जाके अमाननामा रखा। अच्छा वहां भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, नहीं इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट, आका अब्बास ने एक दुश्मन इमाम, एक कातिल इमाम, एक हराम की औलाद की जबान से अपने लिए भांजे का लफ्ज सुना, जलाल ये आदमी मुझे अपना भांजा कह रहा है, ये रिलेशन मुझसे बना रहा। और उस वक्त आका अब्बास इमाम मजलूम के खेमे में उनके सामने थे, अब इमाम सामने हैं तो आका अब्बास, हाँ ये आका अब्बास के पास वो अदब वो एहतराम वो प्रोटोकॉल। हुसैन ने कहा अब्बास वो तुम्हें बुला रहा है तुम क्यों नहीं जाते, कहा मौला ये तो देखिए कि वो क्या कह के बुला रहा है, भांजा कह रहा है, भांजा क्या नेफ्यू, भांजा कह रहा। इमाम ने कहा इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाके उससे बात सुन लो, वो एक रिश्ता बना के आ रहा है, अल्लाह के यहाँ सिले रहमी और रिश्तेदारी का इतना एहतराम है कि कोई झूठा रिश्ता भी बना के आ जाए तो एटलीस्ट उसकी बात सुन लो और उसको एक रिस्पेक्ट दो। हमारे यहाँ सगे रिश्तेदार हकीकी रिश्तेदार वेस्ट में आके सिले रहमी तो ख़त्म ही होके रह गई, जब बाप और माँ की वो हालत है, और मैं नहीं एक जुमला मैं कहने वाला था लेकिन वह नहीं कहूँगा, तो जब बाप और माँ की ये हालत है तो सिले रहमी तो कहाँ गई, ख़त्म। अब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है लेकिन आज की रात नहीं, लेकिन आका हुसैन का जुमला कि ये चाहे झूठा रिश्ता बना के आ रहा मगर एक रिश्ता बना रहा है ना, रिलेशन रिलेशन का इतना एहतराम है कि जाओ और जाने के बाद एटलीस्ट उसकी बात को सुन लो, और अगर सच्चा रिश्ता हो तो तुम्हें जो कुछ उसका हक अदा करना है वो आप सुनते हैं, खैर छोड़ दीजिए। और क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए कमाननामा लाया हूं, तुम जो हो बिल्कुल बिल्कुल ये हुर के वाक़े का उल्टा, हुर सारी दुनिया की सहूलतें छोड़ के भूखा और प्यासा मरने के लिए हुसैन के पास आया है। अब्बास को उल्टी ऑफर दी जा रही कि तुम भूखे हो तुम प्यासे हो अभी जंग होने वाली है जख्मी होगे तीर लगेंगे आ जाओ वहां तुम्हें हर रिवार्ड मिलने वाला। ये दो जो हैं हुर और अब्बास, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। तो खुलासा ये कि जनाब अब्बास ने वो तो जो कहा वो तो कहा कि पूछा कि मेरे आका हुसैन का, हुसैन को तो अमान नहीं मिल सकती है, वो जानवर के बिल में भी चले जाए तो वहां जाके भी उनको मारेंगे। अब्बास ने कहा तुफ है तेरे ऊपर, नहीं चाहिए अमान, लेकिन अब्बास के पास चॉइस था, मजबूरी का नाम सब्र नहीं, ऐसा नहीं है कि हम गुनाह नहीं कर सकते तो हम मुत्तकी बन जाए। अब्बास चाहते तो दुनिया के हर ऐशो आराम, अब ये जो जुमले कह रहा हूं अब्बास की शान के भी खिलाफ है ये बातें कहना, लेकिन जो कि 21st सेंचुरी का मसला यही है ना कि हम अमल करेंगे इस्लाम पे तो हमें मिलेगा क्या। अब्बास के पास च्वाइस है, अब्बास ने आखिरत पर दुनिया को कुर्बान कर दिया कि नहीं चाहिए दुनिया, मरना कबूल है, खाली मरना ही नहीं। अब्बास के बाजू भी कटे हैं, अब्बास का लाशा भी ऐसा था कि उठाया ना जा सका, कहा ये सब कबूल है अगर इसके बदले में आखिरत हाथ से निकलेगी तो। एक आज की रात इस

भी मैंने देखा है कि हमारे यूथ भी हजरत अब्बास की पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस हैं, तो उनको याद दिलाना कि जनाब अब्बास का ये मैसेज भी सुनो। और इसी से ये दूसरा मैसेज आ रहा, जनाब अब्बास की सीरत पूरी पढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन मुख्तसर बात, एक जुमला मैंने शायद यहाँ कहा था, शायद घर की मजलिस में कहा था, कि जनाब अब्बास की पर्सनैलिटी पे पूरी गुफ्तगु हो भी नहीं सकी, क्योंकि एक रात को जनाब अब्बास का जिक्र होता, वो भी सिर्फ मसाइल

उसमें क्या बातें बयान की जाए, वरना अब्बास की पर्सनैलिटी बहादुरी अपनी जगह, वो तो है, वफादारी अपनी जगह, अब्बास की लीडरशिप की क्वालिटी, एक होता है आदमी बहादुर लेकिन क्या वो लीडरशिप की क्वालिटी भी रखता है कि फौज का जनरल बने, वो अपनी जगह। अब्बास का इल्म शरीयत पे कमांड, हबीब इब्ने मुजाहिर के लिए जो लफ्ज़ मैंने कहा था रजुल फकीह, ये अब्बास अलमदार का टाइटल है, अब्बास का एक टाइटल अल फकीह भी है। और मालूम है आपको कि अब्बास का बचपना ही इमाम की औलाद हैं, ये जुमले तो कुछ अच्छे नहीं है लेकिन बचपना ही, जब मौला अली ने अब्बास को बिठा कर एजुकेशन शुरू की थी। इस्लाम में दो तरीके हैं, यानी दो फेजेज हैं, अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करोगे, पहले यह है कि बच्चे से कुछ नहीं कहना, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना कि बच्चा हर चीज़ सीखता जाए। कब की बात हो रही है, बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी दो वीक का है, अभी एक महीने का है, अभी छः महीने का है, अभी एक साल का है, तुम्हारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए वो हर चीज़ सीखता जाए। चुनाचे हम और आप उठते बैठते जब या अली कहते हैं, ये अपने घर के माहौल से हमने सीखा होता है, अकीदा बाद में आता, और उसके बाद एक प्रॉपर एजुकेशन होती। तो जब मौला ने शुरू की थी, बहुत मशहूर वाकया है, आज मैं ये कुछ मशहूर वाकयात बयान कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन क्या करूँ, जहाँ तक जाना है। मौला ने कहा ना, स्टार्ट किया गिनती से, यानी ये जो नंबर सिखाए जाते हैं, कहा कहो बेटा एक, अब्बास ने कहा एक, कहा बेटा आप कहो दो, रुक गए अब्बास, कहा बाबा जिस जबान से एक कह दिया है उस जबान से अब दो कैसे कहूँ, कुल हुवल्लाहु अहद, एक जिस जबान पे आ गया अब दो कैसे आई, अब्बास का वो बचपना है कि अभी एजुकेशन स्टार्ट हुई। तो इसीलिए अब्बास फकीह भी हैं, और ये इल्म फिक्र का मसला नहीं है, ये अकीदे का मसला है, अकीदे के अतबार से फिक्र के अतबार। उसके बाद अब्बास खतीब ओरेटर, अरब के माने हुए खतीब और ओरेटर हैं, लेकिन चूंकि हमेशा शेडो में रहे इमाम हुसैन की, शायद ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, शेडो में रहे इमाम हुसैन के, इमाम के होते हुए अब्बास जबान नहीं खोलते, ये रिस्पेक्ट, ये एहतराम, ये एक प्रोटोकॉल होता इमामत के सामने क्या बोले, लेकिन बेहतरीन ओरेटर थे। और इसकी एग्जांपल क्या, जब आका हुसैन मक्के को अलविदा कहकर करबला आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि अचानक चले गए हों, नहीं, मैसेज दिया और मक्के वालों को बताया कि हम करबला क्यों जा रहे हैं, इतना बड़ा हज का क्राउड है, जैसे पैगंबर ने गदीर खुम के मजमे को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल का लफ्ज़ अच्छा नहीं, उससे फ़ायदा उठाया इसरा हुसैन, मैं जा रहा हूँ, ऐसा ना हो किसी को पता ही नहीं चले हुसैन चले गए और क्यों गए। लेकिन खुद उस वक्त इमाम हुसैन ने स्पीच नहीं दी, चूँकि बहुत मशहूर हो गया, वरना मैंने 15 साल पहले इसी मेम्बर से हुज्जत स्टैनमोर से वो पूरा खुतबा पढ़ा, अब्बास को भेजा, जाओ काबे की छत पे खड़े होकर जो पूरा मेरा मिशन है वो जाके इन सारे हाजियों को पहुंचाओ, जिन हाजियों में इहराम पहनकर तलवारें लेकर हुसैन को शहीद करने वाले भी मौजूद है, जाओ जाओ बताओ। किसको भेजा जाता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए, कि जो बेहतरीन ऑरेटर हो, बेहतरीन कन्विंसिंग वो तकरीर कर सके, अब्बास बेहतरीन खतीब है। चुनाचे वो खुतबा पढ़िए, आज भी आप पढ़ेंगे तो आप हिल के रह जाएंगे, कितना अजीम खुतबा उस वक्त जब हुसैन मक्के से निकल रहे हैं। ये अब्बास की अलग अलग सारी क्वालिटीज़ हैं, जिसमें से एक एक पर भी अगर मैं मजलिस पढ़ूँ तो पूरी पूरी मजलिस हो जाएगी, लेकिन ये अब्बास, वो जो मैंने कहा ना कि एक ऑप्शन था, बाकी कहा कि खुद शिमर का जुमला कि हुसैन तुम तो जानवर के बिल में भी चले जाओ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वहाँ जाकर भी तुम्हें शहीद करेंगे, और ये पूरे बनी हाशिम के लिए सिवाय अब्बास के। अब्बास से इतनी क्या हमदर्दी, कोई हमदर्दी नहीं, शिमर का रिश्तेदार है, नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं, फिर क्या मसाला है, फिर मसाला वो है जो 21st सेंचुरी का दूसरा प्रॉब्लम, एक तो ये है ना कि मेटेरियलिस्टिक, हर चीज में हमको चाहिए कि फायदा यहां मिल जाए, अब्बास ने बताया फायदे मिल रहे हैं ठुकरा के अब्बास, ये जुमले मासूम की तौहीन हो जाते हैं, अब्बास मासूम नहीं है लेकिन शिबे मासूम तो हैं। और दूसरा जुमला, ये शिमर का क्या प्रॉब्लम था, वो क्यों हजरत अब्बास का हमदर्द बन के आया, वही जो आज का प्रॉब्लम है, मरजियत के इंस्टीट्यूशन को तोड़ना, कहां से मैं कहां ले गया बात को, लेकिन इस पर मैंने चूंकि 15 साल पहले यहीं पर मजलिस पढ़ी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बहुत इशारतन एक बात कह रहा हूं।

एक बहुत ही फेमस बुक है, अब आजकल तो इतनी फेमस नहीं रही, लेकिन मैं आज भी रिकमेंड करता हूं कि उसको पढ़िएगा। एक जर्मन स्पाई हम्फ्रे, उसने जो एक बुक लिखी है हम्फ्रे के इतराफात, तो उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं कन्फेक्शंस ऑफ हम्फ्रे है कि क्या है, बहरहाल ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो उसके अंदर एक पूरी प्लानिंग बताई गई। मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, वो एक सपोर्टिंग उसको डॉक्यूमेंट तो समझ सकता हूँ, लेकिन असल क्या है हमारी मर्जी है। जो कल रात की बात हुई थी, इख्तिताम पे पहुंची थी, लेकिन मैं वो वाली बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, एक और एंगल से बात कर रहा हूँ, और वो ये कि बहरहाल जो कुछ भी होगा मर्जियत के खिलाफ जो हो रहा इस वक्त, पूरी दुनिया तैयार बैठी है कि हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा सिस्तानी और रहबर इनमें से किसी को भी कोई नुकसान पहुंच जाए या ये दोनों पर्सनैलिटीज दुनिया से चली जाएं, फिर देखें कि हम क्या करते हैं। पूरा अरब मीडिया, क्योंकि अरब मीडिया ज्यादा इस वक्त इंटरेस्टेड है इराक के हालात में, और आयतुल्लाह सिस्तानी की पर्सनैलिटी एक ऐसी अजीब पर्सनैलिटी बन गई कि तारीख शियत में ऐसे मर्जी बहुत कम गुजरे जिन्होंने नजफ और कुम के उस स्टाइल को जमा करके दोनों के जो जिहाद का तरीका है, जिहाद का एक इल्मी तरीका है उसको भी जमा किया, जिहाद का तरीका उसको भी जमा किया। मैं उनके हालात में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक और बात कह रहा हूँ, वो यह है कि मेरी लाइफ, मैं बहरहाल अराउंड 70 समझ लीजिए, इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ जितना कुछ लोग समझते हैं कि मौलाना आप तो हजरत नू के बेटों के साथ खेले होंगे ना, नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने वो जो है कि अल्लाह है, अल्लाह है, वो है निज़ाम, वो चला रहा है, दुश्मनों की सारी साजिशें जो है वो कुछ भी करते रहें, एक अल्लाह तो है ना, पूरा यकीन होना चाहिए। जो अब्बास ने कहा, जिस जबान पर एक आ जाए उस पर दो नहीं आ सकता है, इस कायनात का निज़ाम मुझे याद है, 1958 यहाँ से इराक में कम्युनिस्ट एंटर हुए, और अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलाम आरिफ, तो खैर ये तो मेरा बहुत बचपने का ज़माना था माँ की गोद का, और वो इराक में एंटर हुए आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा मोहसिनुल हकीम। मैं हालात में नहीं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, घड़ी मुझे बता रही है कि नमाज का वक्त करीब है। वो शख्सियत एक इतनी बड़ी रुकावट बने इन कम्युनिस्टों के लिए, सद्दाम उस वक्त जवान था, बल्कि शायद जवान का लफ्ज़ भी नहीं, नौजवान यूथ में था, और ये सब एक प्लानिंग के तहत था। आगा मोहसिन हकीम, उन्होंने भी एक फतवा दिया था, और उस फतवे की वजह से 20 साल कम्युनिज्म इराक में शिकस्त खाता रहा, और उस वक्त दुश्मनान इस्लाम यानी जो इराक के कम्युनिस्ट थे, वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक कि ये अजीम मर्जी हमारे सामने है हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाचे उनकी मौत हुई, और बहुत ही सस्पेशियस। दो तीन तरीके थे इन लोगों के पास, एक रोड एक्सीडेंट, ऑयल टैंकर से गाड़ी टकरा जाती है, अभी शहादतें होती हैं, कितने वाकयात तो हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं होते, और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जिनका एक एथिक्स होता है डॉक्टरों का, लेकिन वो यूज़ हुए, आगा मोहसिन हकीम शहीद कर दिया, और ये समझा कि हमारी रुकावट ख़त्म हो गई। वो जो इन्होंने फतवा दिया था कम्युनिज्म हराम है, तो अब वो दुनिया से गए। इज़ा मातल मुफ्ती मातल फतवा, एक जुमला मशहूर तो हो गया, लेकिन हर मशहूर चीज़ सही भी नहीं होती है कि मुश्तहिद के बाद उसके फतवे की अहमियत नहीं, ख़त्म होगा। लेकिन फिर एक और बूढ़ा, वो ऐसा सामने आया कि सोच भी नहीं सकता था सद्दाम। अच्छा, उस वक्त सद्दाम ज़रा सा सेकंड था, नंबर वन पे अहमद बकर, हसन अल बकर, और वो मरहूम आयतुल्लाह खुई। देखिए, आज आयतुल्लाह सिस्तानी जो कुछ है ना, वो आयतुल्लाह खुई की मेहनतों का नतीजा है। और वो ये बूढ़ा सामने आया, और उन लोगों के नज़दीक जो इराक के अंदर सद्दामी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बार बार लंबे जुमले इस्तेमाल करूं, उनके लिए आगा खुई बहुत ही आसान शख्सियत, क्यों, इसलिए कि वो अरब नहीं थे। का इराकियों के अंदर ये जो एक किस्म का तासुब है, ये नेशनलिज्म है, इसको बेदार किया जाएगा, तुम अरब ये नॉन अरब। और उसके बाद फिर अच्छा, आगा खुई चूँकि उस वक्त 60 साल से ज़्यादा से नजफ में थे, तो उनकी एक पर्सनैलिटी थी, उनको इस तरह निकालना आसान नहीं था, लेकिन इतना टॉर्चर, चारों तरफ से उनको दबाया गया, किसी तरीके से वो नजफ छोड़ के चले गए, और इराक मर्जिया से खाली हो जाए। चुनाचे जो इनडायरेक्ट तरीके थे टॉर्चर के, बेटे भी शहीद किए गए, पोते भी शहीद किए गए, और बहुत सारे प्रॉब्लम आए।

लेकिन वो अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं हुए और वही जुमला कहते थे जो मैंने पहले कोट किया कि क़यामत में कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ये पूछा जाए कि बना हद तूसी वन हदम अहल खोई, कि जिस नजफ के हौजे को शेख तूसी ने बनाया क्या उसे कोई मुनादिम करके और ख़त्म करके जा रहा। आसान नहीं था सद्दाम के उस वक्त के इनडायरेक्ट टॉर्चर को बर्दाश्त करना, अगरचे उस वक्त बकर था, फिर 78 में उसको हटा के सद्दाम डायरेक्ट आ गया। कितने मजालिम के, अब जिसने करबला में आका हुसैन के रोज़े पे बमबारी की, लेकिन ये बूढ़ा मर्ज उसकी तमाम साजिशों को नाकाम बना के नजफ में डटा रहा। बहुत अहम पर्सनालिटी है, टाइम नहीं है कि मैं अपने महाराजे के हालात बताऊं। उसका नतीजा ये निकला कि जब उनका इंतकाल हुआ तो आगा सिस्तानी जैसी शख्सियत थी। और सद्दाम ने कहा तो बहुत ही आसान हो गया काम, क्यों आगा खोई पे वो डायरेक्ट तो इस तरह से कोई अटैक ना कर सका, उसने क्या किया कि बूढ़े आदमी 80 से ज़्यादा की एज हो गई थी उनकी जब सद्दाम की हुकूमत शुरू हुई थी, कितने साल जिए इनके बाद जो उलमा मराजे मुश्तहदीन की पूरी सफ है ना, सबको शहीद कर दिया, जिनके नाम भी हम नहीं जानते। हम शहीद बाकर सदर का नाम जानते हैं, हम शायद आगा जवाद तबरेजी काजिम तबरेजी जवाद काजिम तबरेजी जैसा अजीम मर्ज, ये सारा सबका खातिमा कर दिया कि खोई के बाद गैप आ जाए। फिर आगा सिस्तानी आए तो बहुत ही जूनियर थे, कहा इनको कौन मानेगा, लेकिन अल्लाह ने देखी ऐसा लगा कि खास इस मौके पे आगा सिस्तानी की मर्जियत को कायम किया कि इस अंदाज से वो 30 साल के मर्जे हैं कि इराक बिल्कुल बदल के रह गया और सारी वो साजिशें ख़त्म हो गई। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जो कुछ भी साजिशें इस वक्त हो रही हैं होती रहे, अल्लाह है। आगा हकीम के ज़माने में हमने देखा सद्दाम ने समझा इनको शहीद किया हम कामयाब होंगे, आगा खोई उनकी मौत भी सस्पेशियस हुई माह सफ़र में, शहीद किया हम कामयाब होंगे। सिस्तानी तो नऊज़ु बिल्लाह तौहीन का जुमला, कल का बच्चा जो खोई और सिस्तानी के बीच में बड़े बड़े मराजे थे जिनकी तकलीद होती वैसे लॉजिकल तरीके से, जैसे आगा रूहानी थे मसलन, या आगा काजिम तबरेजी थे, या आगा बाकर सदर थे, सबका खातिमा, लेकिन अल्लाह ने सिस्तानी को पैदा किया। तो ये लोग तो अपनी साजिशें करते रहेंगे, वह मकर व मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन, तो हमें इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो अल्लाह बचा लेगा अपने दीन का। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जुमला, अबराहा ने अटैक किया, अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लिए, वो ऊँट छुड़वाने गए, अबराहा ने कहा मुझे तो बहुत हैरत, आप अपने ऊँटों के लिए आ रहे हैं, खाने काबा के लिए कोई रिक्वेस्ट लेके नहीं आए, का ऊँट मेरी कस्टडी में है इसलिए मेरे ऊपर इनकी जिम्मेदारी, काबे का मुहाफिज अल्लाह है वो खुद ही अपने घर की हिफाजत करेगा, यही मर्जियत का इंस्टीट्यूशन रहेगा। ये सारी बातें होती रहेंगी, जो साजिशें आप पढ़ते रहते हैं वो होती रहेंगी, लेकिन अल्लाह है वो बचाएगा। जैसे मैंने अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी में तीन मराजे को देख लिया कि हर मर्जे के बाद ये समझा जा रहा था मर्जियत ख़त्म, लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया। लेकिन ये पहली बार इस अंदाज से मर्जियत के खिलाफ साजिश हुई हजरत अब्बास की ज़िंदगी में। करबला में हजरत अब्बास के लिए अमान नामा क्यों आया, शिमर को हजरत अब्बास से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा अब्बास खटकते हैं कि ये हुसैन के मुहाफिज हैं। लेकिन मसला यह था कि अब्बास की शजाअत और बहादुरी से पूरा लश्कर उमर साथ डर रहा है, उनको पता है कि कितना बहादुर है, और कैसे पता ना, खाली सुनी सुनाई बात नहीं है, आंखों देखी बात है। जब जंग सिफीन हुई थी तो यही यजीदियों के बाप दादा ये सब उस सिफीन में मुआविया की फौज में थे ना, 14 साल की एज होगी अब्बास की, अकेले अब्बास ने सिफीन की लड़ाई एक दिन जो लड़ी किसी को यकीन ही नहीं आया, लोग तो समझ रहे थे अली लड़ रहे हैं। अली की हाइट ज़रा नॉर्मल थी, अब्बास की हाइट इतनी ज़्यादा थी कि 14 साल की एज में वो अली लग रहे थे, नकाब चेहरे पे नकाब डाल के आए, बल्कि दुश्मन ने कहा भी था कि आज अली ने धोखा दिया, अपना चेहरा छुपा के आए हैं ताकि पता ना चले कि अली लड़ रहे। लेकिन जब अब्बास ने एक दिन वो सिफीन की लड़ाई अकेले अपनी तलवार से जीत ली और मेरा मौला जब मुस्कुराता हुआ मैदान में आया, तो मुआविया की वक्त परेशान हो गई कि हम तो इनको अली समझ रहे थे, अली तो ये निकले, ये कौन। अली ने जाके अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई, पेशानी को बोसा दिया, कहा मेरा बेटा है, तब पता चला अब्बास है। तो जितने यजीदी करबला में आए हैं इनके बाप अब्बास की तलवार को देखे हुए हैं, और उनके कितने रिलेटिव अब्बास की तलवार से उस वक्त मारे गए जब अब्बास 14 साल के थे। और फिर आ जाइए कि चले सिफीन की लड़ाई को तो मसलन 20 साल गुजर गए, 20 साल, तभी भी एक महीने पहले 9 मुहर्रम से एक महीने पहले जाइए तो 9 जिले जाती है, कूफे के अंदर अकेले मुस्लिम की लड़ाई को इन सब ने अपनी आंखों से देखा है जो आज करबला में आए।

एक अकेला मुस्लिम कूफे की सारी फौजें शिकस्त खा गई। वो तो एक धोखा देकर एक गढ़ा खोदकर मुस्लिम को गिरा के गिरफ्तार किया गया। तो हर एक को पता है कि मुस्लिम से एज में भी अब्बास कम है और बहादुरी में भी ज्यादा। का जब एक अकेले मुस्लिम का मुकाबला हमारी पूरी फौज ना कर सकी तो अब्बास का मुकाबला कौन करेगा। अब ये जो परेशानी थी तो कहा कोई ऐसा तरीका निकालो कि अब्बास को हुसैन से अलग कर दो। भाई यही आज की साजिश का खुलासा है, कोई ऐसा तरीका निकालो कि आम मोमिनीन को अपने लीडर और अपना जो प्रोटेक्टर है उससे अलग कर दो। बस इससे ज़्यादा मरजैयत के लिए आज नहीं कहना चाहता। तो खुलासा यह है कि अब्बास को हुसैन से अलग करना था, अब्बास से कोई मोहब्बत नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कल अब्बास ने तलवार चलाई तो एक घंटे के अंदर जंग खत्म हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि हुसैन हर एक को मख्तल में जाने की इजाज़त देंगे, अब्बास को इजाज़त नहीं देंगे। ज़रा अब्बास से कोई पूछे कि अब्बास के दिल पे क्या कयामत गुजर रही है जब आशूर का जिहाद शुरू हो गया। तड़प तड़प के आते हैं आका के पास, मौला ये सारे मेरे शागिर्द हैं जिनके लाशें उठाए जा रहे हैं, मैंने इनको तलवार चलाना सिखाई, मौला ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मैं जिंदा रहूं और भाई के बच्चे मारे जाए, बहन की औलाद मारी जाए। जरा सोचिए, उन्होंने मोहम्मद का लाशा आया, अब्बास के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी। मेरी शहजादी ज़ैनब कुबरा की बेटे मारे गए और अब्बास गुलाम जिंदा। आप जरा सोचिए, कासिम का लाशा आया, अब्बास के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी। मौला जिस कासिम को तलवार चलाना मैंने सिखाई, जो मेरे सरदार हसन मुश्तबा का बेटा है वो मारा गया, मैं जिंदा हूँ। अली अकबर का लाशा आया तो क्या कैफियत अब्बास अलमदार की होगी, खुद ही सोच लीजिए। बार बार आते, मौला इन सब को रोक दीजिए, पहले मुझे मख्तल में जाने दे। और हुसैन कहते हैं, अब्बास मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार। भाई ये जुमला सुनते हैं अब्बास खामोश हो जाते। मगर आशूर की से पहले कैसा वक्त आया कि जब अब्बास ने जाके कहा, मौला अब तो मुझे जाने दीजिए, हुसैन ने कहा तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार हो। तो अब्बास ने तड़प के कहा, लेकिन मौला वो लश्कर रहा कहाँ, जिस लश्कर का मैं आलमदार हुआ वो लश्कर रहा कहाँ, मेरे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मौला ने कहा, नहीं अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी हो, तुम्हें मख्तल में नहीं जाने दूँगा। मैंने दो पहली मुहर्रम ईव ऑफ सेकेंड मुहर्रम को एक रिवायत पढ़ी थी, उसका दूसरा हिस्सा आज। अब्बास बहुत परेशानी के आलम में खेमे में आए। अब्बास बाबुल हवाइज हैं, अब्बास मुश्किल कुशा के मुश्किल कुशा बेटे हैं, अब्बास हर एक की मुश्किल कुशाई करते हैं। आज अब्बास मुश्किल में हैं, उनकी परेशानी कौन दूर करे। खेमे में आए तो नन्नी सकीना चचा के खेमे में दाखिल हुई और एक मर्तबा कहती है, चचा अभी ये सारे बच्चे मेरे पास आए थे और कहा था कि तुम मुश्किल कुशा की पोती हो ना, बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, कलेजा फुनक रहा है, कहीं से पानी का इंतज़ाम कर दो। चचा मैंने उनसे वादा भी कर लिया, और ये वादा तेरे सहारे तेरे भरोसे पर किया है। चचा क्या तू पानी नहीं ला सकता। अरे अब्बास की तो मुश्किल कुशाई सकीना ने कर दी। अब्बास ने एक मरतबा कहा, बेटी तेरा चचा पानी लाने को तैयार है, आका इजाजत नहीं दे रहे। सकीना कहती हैं कि चचा अच्छा आइए चलें, मेरे साथ चलिए, मैं बाबा से आपकी सिफारिश करती हूँ, बाबा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। अब्बास ने खुशी के आलम में सकीना को गोद में उठाया और एक मर्तबा हुसैन के खेमे में गए। हुसैन इमाम मासूम है, अब्बास की यह हालत देखी, सकीना को ला रहे हैं, समझ गए। एक मर्तबा का, अब्बास अब तुम ऐसी सिफारिश लाए हो कि मैं मना नहीं करूँगा, जाओ इजाज़त दी। लेकिन सकीना बेटी एक बात सुन लो, अभी चचा की सिफारिश कर रही हो, बाद में यही चचा बहुत याद आएगा जब रुखसार पे तमाचे लगेंगे, जब कमर पे कोड़े पड़ेंगे। लेकिन जाओ सकीना की सिफारिश। अब्बास घोड़े पे सवार होके चलने लगे। हुसैन ने कहा, अब्बास कहाँ जा रहे हो। अब्बास घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आका हुक्म वापस ले। कहा, आका आपने इजाज़त दी। कहा, मैंने इजाज़त दी है, लेकिन तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक ज़ैनब भी तुम्हें इजाज़त ना दे। अल्लाह, किसी बूढ़ी बहन से पूछे, 34 साल का कड़ियल जवान भाई आए,

और कहे हाथ जोड़ के शहजादी अब मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। ज़ैनब ने सर से पैर तक अब्बास को देखा, अब्बास नाना के दीन को जरूरत है, मैं कुछ ना बोलूंगी सिर्फ एक जुमला कहूंगी। एक दिन मैं बाबा के पास बैठी थी, बाबा मेरे सर पे हाथ फेरते फेरते मेरे बाजुओं को देख के रोने लगे। मैंने कहा बाबा आप मुझे देख के क्यों रो रहे हैं? कहा ज़ैनब बेटी एक दिन शहर कूफा में तू आएगी, आज शहजादी है उस दिन कैदी होगी, बाजुओं में रस्सियां होंगी, सर पे चादर नहीं होगी, वो वादा कर बद्दुआ ना करेगी। मैंने वादा कर लिया मगर दिल में ख्याल तो आया जिस बहन का अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कौन छीने, उसके बाजुओं में रस्सी कौन बांधे। लेकिन अब्बास आज जब तुम पानी लाने जा रहे हो ना, अब ज़ैनब को यकीन है वो वक्त आ गया, मेरी चादर छीनने वाली है, मेरे बाजू में रस्सी बंधने वाली। और अब्बास चले। अब एक अंदाजा करें आप कि शेर खुदा का बेटा हैदर कर्रार का वारिस कैसा जिहाद कर रहा होगा। हुसैन ने अब्बास को तलवार चलाने की इजाजत नहीं दी थी ना, लेकिन तलवार भी रखवा ली थी, कमर से तलवार खोल के रखवा ली थी, खाली नेजा दिया था, फिर भी ये शेर खुदा का शेर किस तरह से जिहाद कर रहा। बाद उलमा से सुना कि ज़ैनब खेमे में बैठी हैं, फिजा खेमे के दरवाजे पे खड़ी, एक मरतबा कहती है शहजादी ज़ैनब जब मैं आपको आपके बाबा के हालात सुनाती थी ना, ज़ैनब बहुत छोटी थी, कि आपके बाबा ने बद्र में कैसे तलवार चलाई, उहद में कैसे तलवार चलाई, खैबर किस तरह फतह किया, तो आप कहती थी ना कि काश मैं भी अपने बाबा की जंग देखती। आइए दरे खेमा पर, आज अब्बास जंग नहीं कर रहे, आज हैदर कर्रार खैबर फतह करने जा रहे। और फिर जहां से मजलिस शुरू हुई थी वही जुमला, अब्बास फुरात के किनारे पहुंच गए, ये करबला का वाहिद शहीद है, पानी मिल गया। देखिए मेरा शुरू मजलिस का मौजू था ना कि मिल गई एक चीज और छोड़ दी गई, जिसे मिले ही नहीं लेकिन मिली, दरिया पे कब्जा किया, पानी अपने हाथों में लिया। लेकिन एक बार वापस पानी डाल दिया, जब तक हुसैन के बच्चे प्यासे हैं अब्बास पानी नहीं पी सकता। और अब अब्बास मश्क भर के चले, और उधर क्या हुआ, जैसे ही अब्बास चले थे ना, सकीना ने सारे बच्चों को जमा किया, कहा था बच्चों कूजे लेके आ जाओ, मेरा चचा वादा करके गया है, आज तक चचा ने वादा खिलाफी नहीं किया, पानी आ रहा। अब अब्बास फुरात के किनारे गए, 30,000 के लश्कर ने अब्बास को घेर लिया, अब्बास वापस आ रहे। उमर साद ने आवाज दी, सिपाहियों ये पानी खेमों में ना जाने पाए, किसी ना किसी तरह से अब्बास को रोकना। बच्चों को अब्बास नजर नहीं आ रहे, हाँ अलम नजर आ रहा है, अलम नजर आ रहा है, अलम नजर आ रहा है, देखा अलम आगे बढ़ रहा है, खेमों की तरफ आ रहा है, खेमों की तरफ करीब आता जा रहा है, बच्चे अलम देख रहे हैं। मगर एक मर्तबा बच्चों ने देखा अलम दाई तरफ झुका, ऐसा लगा अलम गिरने वाला, आप समझ गए अब्बास का दाया बाजू कट गया। लेकिन फिर बच्चों ने देखा अलम संभल गए और आगे बढ़ा, बच्चों ने देखा अलम बाई तरफ झुका, अब्बास का उल्टा हाथ कट गया लेकिन फिर आलम संभल गया और आलम आगे बढ़ा। सकीना ने कहा बच्चों कूजे संभाल लो, देखो मेरा चचा करीब आ गया। मगर ऐन वो वक्त था जब हर मुला से कहा गया, हर मुला अपने तीन भाल के तीर को इस्तेमाल कर। वो तीर चला, मश्क सकीना में लगा, मश्क सकीना छिदी, सारा पानी बह गया। और अब हाथ कट गए तो अब्बास ने अलम संभाला, मश्क छिद गई, अब अलम जमीन करबला पे गिर के ठंडा हुआ। इधर सकीना ने ये मंजर देखा, वहीं से आवाज दी चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, वापस आ जा। और अब्बास की आवाज आई आका अलैका मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम लीजिए। हुसैन चले, अब्बास के सरहाने पहुंचे और एक मरतबा जमीन पे बैठ के अब्बास का सर अपनी गोद में लिया, कहा अब्बास कोई आखिरी वसीयत है, मौला जब पैदा हुआ था पहली जियारत आपके चेहरे की थी, दिल चाहता है आखिरी जियारत भी आपकी करूं, मगर क्या करूं, एक आंख पे खून जमा है, दूसरी आंख में तीर लगा है, मौला काश मेरे हाथ होते तो आंख का खून साफ कर देता, बस अपनी अबा के दामन से
खून साफ कीजिए। हुसैन ने खून साफ

किया। अब्बास ने आँख खोली, आखिरी ज़ियारत हुसैन की की। हुसैन ने कहा, अब्बास मैंने तुम्हारी वसीयत तो पूरी कर दी ना, अब एक ख्वाहिश मेरी भी है और वो ये है कि जब से सुना तुम्हारी जबान से अपने लिए आका का लफ्ज सुना है, एक बार मुझे भाई कह दो। अब्बास ने हुसैन का हुक्म सुना, आखिरी जुमला का भाई। अब्बास दुनिया से गए, हुसैन ने अब्बास का आलम उठाया, खेमे में आए, बीबियों को जमा किया, आलम बीच में लिया, कहा कि बीबियों अब मुझे रुख्सत करो, मेरा अब्बास मारा गया, अब मैं जा रहा हूँ। आलम आ गया, आलमदार ना आया। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा।

और रहम करो, तमें माफ करसो, खुदा माफ करसे, चलो ना माफ करी आप एक बीजा ने गले थी मले, हजी तो हूँ मिंबर थी नीचे उतरू छू, या अल्लाह, मिंबर थी नीचे उतरू छू एक नमाजी मोमिन, परेशगार मोमिन, नमाजे जमात त्रण वक्त परुआ वारो मोमिन, सफे अव्वल मा बैठवा वारो मोमिन। मारी पास आवे छे मौलाना साहेब, तमे आजे जे बयान केरा के आजे तो माफी मलवानी छे, आ रात नी अंदर मने एक सवाल नो जवाब आपो, मने एक ज सवाल नो जवाब आपो, अल्लाह मारा चाचा ऊपर अजाब करसे के नहीं करे, अजाब में वधारो करसे के नहीं करे। मैं नाम कहीं जो छू, भाई आ तमे केवो सवाल करो छो ना, हमारी समझ नहीं बार तो के मौलाना।

एहसास नहीं होने देना चाह रहे थे कि वो नमक डालने भूल गई। नमक उठा के उन्होंने देखे कि बीवी आ रही है, तो नमक को उठा के साइड में रख दिया। अब बीवी के खाने में नमक है, इनके खाने में नमक नहीं है। इफ्तार पूरा किया, बीवी ने खाना खाई, बीवी को लगा खाने में नमक है। बीवी ने पूछी आखिर में खाना कैसा बना था, कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बना था। शौहर ऐसा बन जाए तो बीवी मोहब्बत से विलायत अपनी दे देगी। एक बार इमाम खुमैनी बेटी के साथ बैठे हुए थे, उनकी वाइफ नहीं थी, तो उनकी बेटी ने कहा कि आज आपका दिल नहीं लग रहा है खाने में। देखें मर्जे तकलीद हैं, वली फकीह हैं, लेकिन माहौल दस्तरखान पे सुफरे पे कैसा है, मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं हाँ सही बात है, आज मेरा दिल नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है। बेटी ने कहा कि कितनी खुश नसीब है मेरी माँ, क्या आप जैसा शौहर मिला। इमाम खुमैनी कहते हैं तुम अपनी माँ जैसी बन जाओगी तो खुदा मुझ जैसा शौहर तुम्हें पहुँचा दे। घर में ये माहौल मोहब्बत का कि शौहर आए तो घर में लगे कि कोई रहमत का नुमाइंदा आया है। बीवी शौहर का एहतराम करे, शौहर बीवी का एहतराम करे, क्योंकि आज वक्त नहीं है और चीज़ें बयान करने का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश नसीब हैं, मौलाना मौजूद हैं अजीम शिराजी साहब, और आप लोगों के यहाँ मैरिज बोर्ड है, सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, आप उसमें शरीक हों, पार्टिसिपेट करें। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में गाइडेंस लेता हूँ मौलाना से, आप क्यों नहीं लेते। अज़ीज़ाने गिरामी, मैरिज एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ज़िंदगी के अंदर। शौहर और बीवी मिल के एक ऐसा खैमा बना रहे हैं जहां पर इमाम ज़माना की सिपाहियों की तरबियत हो रही है, उसे घर कहते हैं। जब बीवी को एहसास हो, शौहर को एहसास हो, तो जिंदगी एक बहुत खुशगवार जिंदगी हो सकती है। तो जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत कोऑपरेट करे, वहीं पर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मर्द भी समझे कि बीवी के हुकूक क्या हैं। बैलेंस्ड जिंदगी जो है वो इंसान को कामयाब बनाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, जो मदरसे के टीचर्स हैं आप उनसे पूछ लीजिए, जिन घर में बीविया मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं, उन घर के बच्चे जब मदरसों में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, उनका परफॉर्मेंस सबसे लो और वीक होता है। ये उनसे पूछ लीजिए, आप टीचर से पूछ लीजिए। बस वक्त नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात में ये फैसिलिटीज हैं। इन फैसिलिटीज को आप लोग ये नहीं सोचे कि मुझे तो आता है, मेरी 20 साल हो गई शादियों के, नहीं ऐसा नहीं है। मैं कुछ हदीसें जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़ दूं ताकि अहले बैत क्या कहते हैं हमारे लिए वाजे हो जाए। हदीस है जहां पर मासूम कहते हैं कि अगर किसी के दिल में हमारी मोहब्बत जैसी बढ़ती चली जाती है, वैसे ही उसके दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत भी बढ़ जाती है। कभी आपने ऐसा सोचा था? अहले बैत बोल रहे हैं, हमारी मोहब्बत जैसी बढ़ेगी वैसी ही बीवी की मोहब्बत भी बढ़ना चाहिए। रिवायत है कि अगर शौहर बीवी के साथ एक सुफरे पे बैठे और मोहब्बत से एक दूसरे को देखे तो कहा उम्रे से ज्यादा सवाब है। बीवी को अटेंशन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, केयर चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, शौहर कुछ नहीं देता। उसकी जिम्मेदारी है कि बीवी के एहसासात को वो कवर करे, फिर देखे जिंदगी के अंदर कैसे दोनों तरफ से मोहब्बत बढ़ती है।

आप गौर करें, हम लोग मसाहिब में पढ़ते हैं, लेकिन इस पर गौर करें कि जब भी मौलाए कायनात घर में आते थे तो कहते थे कि मैं बाहर पे, बाहर जो मुझ पे हुए गम और सितम होते थे, मैं फातिमा जहरा का चेहरा देखता था, सारे भूल जाता था। क्यों? क्योंकि घर में फातिमा जहरा वो माहौल रखती थी अली के लिए, उनसियत थी एक दूसरे से। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ये बात मैं यहां पर आज रोक रहा हूं वगरना, क्योंकि आज मजलिस लेट भी शुरू हुई है, लेकिन जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीवियों को या ख़वातीन को जो वेस्टर्न कल्चर है उससे बचाया जाए, वहीं पर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मर्द ईस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर गालिब ना करें, इस्लामिक कल्चर को गालिब करें, इस्लामिक कल्चर के मुताबिक जिंदगी मियां बीवी मिलके बसर करें ताकि जिंदगी शीरीन हो सके। एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली। अज़ीज़ाने गिरामी, करबला और करबला में ख़वातीन का किरदार, कल हमने इब्तिदाई गुफ्तगू की थी कि करबला में जिन्हें करबला साज, करबला का, करबला की बानी जो ख़वातीन हैं उसमें चार किस्में हैं। पहली वो जो करबला नहीं थी लेकिन उनका वजूद ना होने के बावजूद भी करबला में था, करबला साज ख़वातीन। दूसरी वो जो करबला में थी और जिन्होंने मसायब देखा। तीसरी वो जो करबला के बाद से लेके मदीना तक वो रहीं। तीसरा कैरेक्टर यानी बाद करबला असीरी का जो ज़माना है वो है। और चौथी वो जो न करबला में थी न असीर हुई लेकिन जिन्होंने करबला के मदीने के बाद से लेके आज तक करबला को जिंदा रखा है। ये चार ख्वातीन हैं जिसमें पहला और चौथा जो कैरेक्टर है वो आज की ख्वातीन के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। वो ख्वातीन जो करबला में नहीं थीं लेकिन उनका किरदार करबला में था, वो कौन हैं? वो माएं हैं जिन्होंने बच्चों की तरबियत ऐसी की कि वो बच्चे करबला पहुंच गए। वो बीवियां थीं जिन बीवियों ने अपने शौहर को नहीं रोका कि तू क्यों जा रहा है, बीवियों ने कहा तू क्यों नहीं जा रहा है। वो करबला की माएं, वो बीवियां, दुल्हन जुहैर की बीवी। हजरत जुहैर अजीब कैरेक्टर हैं। हजरत जुहैर उस्मानी थे, वो बिलीव करते थे कि मौला अली ने उस्मान का कत्ल किया है। लेकिन अहले बैत के मुकाबले में नहीं आ रहे थे, काफिला आगे पीछे चल रहा था जुहैर का और मौला हुसैन का। जुहैर चाह रहे थे कि मेरा काफिला ऐसी जगह रुके कि मुझे हुसैन का सामना ना करना पड़े। एक जगह ऐसी आई जहां जुहैर और हुसैन करीब रुके। हुसैन ने कासिद को भेजा जुहैर के पास। कासिद जुहैर के पास जाता है, कासिद ऐलान करता है कि मैं हुसैन की तरफ से आया हूं। रिवायत के जुमले हैं कि ऐसा लगा कि जुहैर के हाथों में लुकमा ऐसे ही रुक गया जैसे कि उनके सर पे कोई परिंदा बैठा हो। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा हुसैन से दावत आई है। कहा क्या कर रहे हो? कहा सोच रहा हूं। कहा फातिमा जहरा का बेटा बुला रहा है और तुम सोच रहे हो? ये बीवी है, ये बीवियां करबला पहुंचा देती हैं, जन्नत पहुंचा देती हैं, इंसानों में सबसे बड़े मकाम पे पहुंचा देती हैं ये बीवियां। कहते हैं कि जब जुहैर जा रहे थे तो उनके चेहरे पे शिकन थी, जब
कुछ

देर, गौर करिएगा जवानों, कुछ देर हुसैन जुहैर से मिले, कुछ ही देर मिले, लेकिन एक ज़ियारत ने जुहैर को हुसैनी बना दिया। मजलिसें भी ऐसी होती हैं, कुछ लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन कुछ मजलिसें ऐसी होती हैं कि एक मजलिस या एक ज़ियारत ऐसा असर करती है कि वो आता कुछ और है, जाता कुछ और है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या अब्बास। जब वापस आए जुहैर तो मुस्कुराते हुए आए। क्यों मुस्कुराते हुए ना आते? पता था बहिश्त खरीद के आए हैं। पलट के आए, दुल्हन ने कहा चले जाओ, रोका नहीं, तश्वीक की, जाओ हुसैन के लश्कर में, मैं जिंदगी गुजार लूंगी। जुहैर गए। इसी तरीके से उम्मुल बनीन ने अपने चार बेटों को पाला। तमन्ना ये थी कि ऐसे बच्चे हों जो कर्बला में वक्त के इमाम पे के लिए काम आ सकें। कर्बला में उम्मुल बनीन नहीं है, लेकिन किरदार उम्मुल बनीन कर्बला में है। वो माएं जो बच्चों को इसलिए परवान चढ़ाती हैं कि मुझे वक्त के इमाम पे कुर्बान करना है, वो तमन्ना ये करती हैं, दुआ ये मांगती हैं, खुदाया मुझे ऐसे बच्चे दे जो वक्त के इमाम के लिए काम आ सकें। ये वो माएं हैं जो कर्बला में नहीं हैं, लेकिन उनका किरदार कर्बला में है। उम्मुल बनीन, लब्बैक या उम्मुल बनीन, लब्बैक या उम्मुल बनीन। अजीज, लब्बैक या उम्मुल बनीन। अजीजाने गिरामी, एक कैरेक्टर और कर्बला में है, जो कर्बला में है नहीं, लेकिन कर्बला साज है, कर्बला को बनाने वाला है। गौर करिएगा, तारीख में बसरा में खातून मिलती है जिसका नाम मारिया बिनते साद बताया गया है। बसरा में, बसरा के हालात आपके लिए क्लियर होने चाहिए कि बसरा में अहले बैत के दुश्मनों को, मौला अली के चाहने वालों को, अहले बैत के मानने वालों को चुन चुन के मारा जाता था। हम कहते हैं उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद मलऊन, इब्ने ज़ियाद यानी ज़ियाद का बेटा, जो ज़ियाद था उसका नाम था ज़ियाद इब्ने अबी। ज़ियाद जो अपने बाप का बेटा है, क्योंकि तारीख में उसके बाप का नाम नहीं था, या उसे बिनते सुमैया कहा जाता था, सुमैया का बेटा। शदीद अहले बैत पे जुल्म करने वाला, अहले बैत के चाहने वालों पे जुल्म करने वाला। बसरा को थोड़ा सा मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि बसरा क्या था, और फिर आप समझे कि मारिया बिनते साद का कितना बड़ा किरदार है। सन 40 हिजरी में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, और चार महीने के बाद जो है वो सुलनामा लिखा जाता है, मजबूर किया जाता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। सन 43 हिजरी में, 43 हिजरी में मुआविया जो था उसका इराक का जो बेल्ट था वहां पर उसकी हुकूमत कमजोर थी, वहां पर अली के चाहने वाले ज्यादा थे। बसरा, कूफा, इस पूरे बेल्ट में अली के चाहने वाले ज्यादा थे। इसने, मलऊन ने क्या किया, उस वक्त तक ये जैद जो है वो मुआविया की आर्मी में नहीं था, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत

ही ज्यादा मक्कार और बहुत ही ज्यादा जालिम किस्म का इंसान था। आप देखें कि जब कहा जाता है अहले बैत को वो बेहतरीन थे और उनको बदतरीन लोगों ने मारा है, हकीकत में उनके सामने जो आए थे वो बदतरीन लोग थे। मुआविया ने जैद को बुलाया और ऐलान किया, गौर करें क्या ऐलान किया, ऐलान किया कि मेरे बाबा दौरे जाहिलियत में अबू सुफियान गए थे सुमैया के पास और ये अबू सुफियान का बेटा है, यानी इसका बाप नहीं था तो मुआविया ने अपने बाप का नाम जैद को दिया। और एक सेरेमनी रखा जिसके अंदर गवाह बुलाए गए और गवाह बुलाने के बाद इसने ऐलान किया कि जैद अबू सुफियान का बेटा है और क्योंकि दौरे जाहिलियत थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीजाने गिरामी, फिर जैद आया क्योंकि जैद उस जमाने में मुआविया की टीम में नहीं था, इसलिए जैद को पता था बसरा में और कूफा में शिया कौन कौन है। चुन चुन के जैद ने, मलून ने अहले बैत के चाहने वालों को 43 हिजरी से 53 हिजरी तक मारा और जो अहले बैत के चाहने वाले थे उनको कूफा और बसरा से निकाल कर भगवाया उसने। उलमा कहते हैं कई हजार लोग माइग्रेट किए इसी पीरियड में जबकि जैद हाकिम था, इसीलिए उबैदुल्लाह इब्ने जैद का जो वो था खौफ था जब वो कूफा में आया वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की वजह से नहीं था, ज़ियाद की वजह से जो उसका बाप था उसकी वजह से था। हुजर बिन आदी को इस्मलून ने शहीद किया 12 लोगों के साथ, जिंदा अली के चाहने वालों को जिंदा जला के उनको इस तरीके से बाजारों में फेंक दिया जाता था। ये जुल्म जैद ने किया। और जब मारते थे, गौर करिएगा, जब मारते थे ये लोग तो मारने के बाद पब्लिक डिस्प्ले करते थे ताकि टेरर क्रिएट हो, खौफ क्रिएट हो। लुबनान के सैयद ने एक बार कहा था, क्या कहा था, कि ये जो आज दुनिया में दाइश और आइसिस मार के जो ये लोग लोगों को लटकाते हैं, आप जाके तारीख में पढ़ो इन्हें शुरू किसने किया था, कहां से इन लोगों की नसें जुड़ी हुई हैं। तारीख में इन लोगों ने किया है जो आज कर रहे हैं दाइश, मारने के बाद लटकाया जाता था। अब ऐसे माहौल में मारिया बिनते साद नाम की एक पाकीजा खातून बसरा में है, वो अपने घर पे मजलिसें करवाती हैं। अहले बैत के चाहने वालों की मजलिसें महफिलें मारिया बिनते साद के घर में होती हैं। जब मौला हुसैन का कासिद आता है तो पहली मीटिंग मारिया बिनते साद के घर में होती है। जो महफिलें, जो गौर से सुने मेरी बहनों, जो महफिलें जो मजलिसें मारिया के घर पे होती थीं, उनकी तरबियत की वजह से करबला में 12 शहीद इनके घर की तरबियत से शहदाए करबला में शामिल हुए 12। बस मारिया करबला में थी नहीं लेकिन मारिया का वजूद करबला में था। बस मजलिसें भी दो किस्म की होती हैं, एक वो होती हैं जिसमें सिर्फ सवाब मिलता है, एक वो होती हैं जो वक्त के इमाम के सिपाहियों को तैयार कर रही होती हैं। लब्बाई कया महदी, लब्बाई कया महदी, लब्बाई कया महदी। बस अजीजाने गिरामी, ये पहला कैरेक्टर हमें करबला में नजर आता है। अब तारीख में देखेंगे आपको और लोग मिलेंगे, लेकिन ये रास्ता आज भी मौजूद है। आज भी अगर कोई चाहे
کہ کربلا میں نہ ہوں لیکن اس کی مجلس جو گھر پہ چھوٹی مجلس ہو رہی

0: गए जो छोटी छोटी मजलिसों के जरिए से ऐसी मजलिसें कराएं कि इन मजलिसों से इमाम के सिपाही तैयार हों। ये रास्ता खुला हुआ है, बस पहला कैटेगरी मेरे लिए ओपन है कि मैं भी ऐसी मजलिसें कराऊं। मजलिसें कराते वक्त मेयार ये ना हो कि कितने लोग आएंगे, कितना फेमस स्पीकर है, मेयार ये हो कि कितनों को मैंने हुसैनी बनाया। अजीजा ने गिरामी, बस इस बात पे गौर करिए, पहला पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी उनकी है जो मैदान करबला में मौजूद थी, खवातीन। ये वो खवातीन थीं कि शब आशूर को अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, बेटा देखो कल वक्त के इमाम पे तुम्हें शहीद होना है, जान देना है, कुर्बानी कर देनी है। ये वो माएं नहीं थी जो ये कह रही थी मौला के सदके में तुझे जिंदा रहना है, ये कह रही थी मौला को जरूरत पड़े तो तुझे अपनी जान देनी है मौला के लिए। दूसरी कैटेगरी है वहाब कल्बी, चंद दिन का मुसलमान। मौला हुसैन गुजर रहे हैं, वहाब कल्बी नहीं थे, उनकी मां और उनकी बीवी थी, पानी की प्यास थी, हुसैन ने पत्थर हटाया, चश्मा जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया। जब वहाब कल्बी पलट के आए तो उनकी मां कहती है मुझे पता नहीं जो आया था वो कौन था, लेकिन मैंने हजरत मरियम के बेटे को ईसा को नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है अगर ईसा होते तो ऐसे होते। चंद दिन का मुसलमान, माएं देखें करबला क्या है। वहाब कल्बी आते हैं, बैत करते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, जंग में जाते हैं, मैदान में लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं। उलमा कहते हैं कि उनकी बीवी, चंद दिन हुए थे, 20 दिन हुए थे शादी होके, उनकी बीवी उनके लाशे पे गई, रजस पड़ती रही तो उनकी बीवी को भी वहीं शहीद कर दिया, शहादत नसीब हुई उनकी बीवी को। सर काट के वहाब का मां की तरफ फेंका तो वहाब की मां ने सर को उठाया, पलट के फेंक मारा, कहा खुदा की राह में जो दे देते हैं वापस नहीं लेते। याली करबला, करबला करबला करबला,
1: लबैक या हुसैन,
0: लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। मौला सलामत रखे इन बच्चों को, इंशाल्लाह हुसैनी किरदार अदा करे, और इनकी माओं को इंशाल्लाह वहाब कल्बी का किरदार अदा करे इंशाल्लाह। अजीजाने गिरामी, करबला में एक छोटा बच्चा है उमर इब्ने जुनैदा, 11 साल का बच्चा था, 11 साल का, बाबा शहीद, चाचा शहीद, खानदान में बहुत शहीद। हुसैन के पास आए, दामन हुसैन को किस तरीके से हिलाया, हुसैन नीचे देख रहे हैं कौन है, देखा 11 साल का बच्चा है। कहा क्या हुआ? कहा मौला जान देना चाहता हूँ, शहादत चाहता हूँ, मौला शहादत चाहता हूँ। कहा नहीं, तेरे बाबा का गम काफी है। कहा जाओ अपनी माँ के पास, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाबा का गम काफी है। कहा मेरी माँ ने हाथों से सजा के भेजा है। ये माएं हैं करबला की, जिनके लिए शहादत खातिमा नहीं है, शहादत शरफ है। फातिमा जहरा के सामने अपने बच्चों को पेश कर रही हैं ये माएं। ये है करबला की औरतें। अजीजाने गिरामी, वो माएं जो करबला में थीं, वो बहनें जो करबला में थीं, आप देखें भी आज हम मसाइब पढ़ेंगे, लेकिन रिवायत में आपको

एक जगह करबला में एक बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो हुसैन से ये कहता हो कि मौला बैत कर ले, पानी मिल जाए। छोटे छोटे बच्चे अलतश तो कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे मौला हक के लिए कुर्बानी देनी है, हम रेडी हैं, राजी हैं। ये करबला है। बस वो औरतें जो करबला में थीं, दुनिया कहती है औरतें कमजोर होती हैं, हम कहते हैं जो ज़ैनब कुबरा को मानती हैं वो औरतों के जिगर चट्टानों से ज्यादा मजबूत होते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, दो मिसाल देता हूं ताकि आपके लिए वाज़े हो जाए कि सिर्फ उस जमाने की बात नहीं, आज की भी बात है। लुबनान में बम गिरा, एक कार में बम गिरा, एक औरत है उसकी तीन बेटियां शहीद हो गई एक साथ, तीन बेटियां। आज जब आप गम मनाएंगे तो याद रखना लबनान में कैसे गम मनाया जा रहा होगा। उनकी तीन बेटियां शहीद हो गई, मां भी शहीद हो गई, लेकिन खुदा ने इनको बचा लिया। इनका वीडियो है YouTube पे, आप देखेंगे, वीडियो अवेलेबल है। इनसे वो पूछती है, बताओ, रिपोर्टर पूछता है, बताओ कैसा महसूस कर रही हो? मुस्कुरा के कहती है, सुकून महसूस कर रही है। फिर वो कहती है, माएं सुने गौर से, वो कहती हैं कि मेरी बेटियों को हज़रत इब्राहिम का किस्सा बड़ा पसंद था। मैं रात को सोने से पहले उनको कुरान के किस्से सुनाती थी, उनको हज़रत इब्राहिम का किस्सा बड़ा पसंद था कि जब हज़रत इब्राहिम को आग में डाला गया तो खुदा ने उस आग को ठंडी कर दिया। कहती है, मुझे यकीन है जब मेरी बच्चियां आग में गई थी तो खुदा ने उस आग को ठंडा कर दिया हो। ईमान देखें, कुरान पे ईमान, अहले बैत पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अल्लाह के वादों पर ईमान, ये माएं अभी हैं। जब पेजर अटैक हुआ, आज मैंने एक वीडियो देखा, बेचारे नाबीना, लेकिन इमाम हुसैन का नियाज बांट रहे हैं नाबीना सारे, उनकी मजलिसों की रिक्कत और होती है जो अपना हाथ पैर आंख हुसैन पर लुटा चुके होते। अज़ीज़ाने गिरामी, वीडियो दोनों मौजूद है। एक औरत है ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी है, गौर से सुनिएगा, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर उससे रिपोर्टर पूछता है कि आपके शौहर की आंखें चली गई, सीना जख्मी है, चेहरा जख्मी है, कैसा महसूस कर रही है? कहती है, खुदा तेरा शुक्र है कि हुसैन की राह में कुछ तो कुर्बान करने का मौका मिला। वो कहती है, रिपोर्टर चौंक जाती है, कहती है, तुम्हारा शौहर नाबीना हो गया है, मुंह जल गया है, हाथ जल गया है, इतना सुकून है, कहां से तुम्हें ऐसा जज्बा मिलता है? तो कहती है, ज़ैनब कुबरा से हमने सीखा। लबैक या ज़ैनब, कहा कि ज़ैनब कुबरा से, मैंने तो कुछ नहीं दिया, ज़ैनब कुबरा ने पूरा कुनबा देने के बाद कहा था, मा राईतु इल्ला जमीला। ये औरतें आज मौजूद हैं मैदान में, लुबनान में, ईरान में, फलस्तीन में, ये औरतें मौजूद हैं। मैं मीनाब गया था जो स्कूल में हमला हुआ था। अज़ीज़ाने गिरामी, ये देखिए करबला क्या करता है, इंसान को क्या बना देता है। जब पहला बम गिरा था तो टीचर्स भाग सकती थी, जो जिंदा थी भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने वालिदैन को फोन किया कि जल्दी आए, बच्चों को ले जाएं जो बचे हुए हैं, कई नहीं। एक टीचर थी जिसने 6 या 5 बच्चों को ऐसे आगोश में लेके बैठी थी। दूसरा बम गिरा, न बच्चे बचे, न उस टीचर का सर बचा।

लेकिन वो ज़ैनब कुबरा की मानने वाली थी, गई नहीं मैदान छोड़ के। अजीजाने गिरामी, ये है करबला। आज हम में और दूसरों में फर्क यही है कि हमारे पास करबला है, उनके पास करबला। हमारे यहां शहादत से डर नहीं लगता, हम शहादत से मैदान में आके लेते हैं शहादत को। बस दूसरी वो औरतें हैं जो करबला के मैदान में मौजूद थीं, कुर्बानियां दी जा रही थीं, शहादतें दी जा रही थीं, लेकिन जर्रा बराबर किसी खातून ने नहीं कहा कि मौला कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कहा हम हाजिर हैं, हम कुर्बानियां देंगे। दूसरी किस्म की खवातीन थी। तीसरी किस्म की खवातीन वो थीं जो मैदान करबला के बाद मैदान में नहीं थी, लेकिन उस पूरे सफर में, गौर करिएगा, दो किरदार हैं करबला में, एक हुसैन और एक ज़ैनब। किरदार हुसैन और शहदाए करबला रोज़े आशूर तक है, उसके बाद किरदार ज़ैनबी है। हुसैन को हुसैन, ज़ैनब ने जिंदा रखा, करबला को करबला, ज़ैनब ने बाकी रखा है। उसके बाद ज़ैनब कुबरा का किरदार है। अज़ीज़ाने गिरामी, शायद लोगों को लगे कि औरत कमजोर होती है, लेकिन जो ज़ैनब को एक बार पढ़ ले उसे समझ में आता है कि औरत कितनी मजबूत होती है। अब गौर करें, ज़ैनब कुबरा मैदान में है, दुश्मन के सामने हैं, इस हालत में हैं कि हाथ इस तरीके से बंधे हुए हैं, लेकिन जज्बा देखें ज़ैनब कुबरा का, कि ज़ैनब कुबरा जब कूफा बाजार शाम में आती हैं तो बाजार शाम में उन लोगों को डांटती हैं, कहती हैं, सॉरी कूफा के बाजार में कहती हैं, या अहलल कूफा, ए कूफा वालों, ए धोखेबाजों, ए गद्दारों, ए हीला करों, जब वक्त के इमाम को जरूरत पड़ी तो तुमने साथ नहीं दिया, अब रो रहे हो, खुदा करे ता कयामत रोते रहो। बस रोने दो किस्म के हैं, एक वो जो वक्त के इमाम की मदद के साथ हो, नुसरत के साथ हो। ज़ैनब कुबरा पूरे सफर में, चौथे इमाम मौजूद हैं, चौथे इमाम सिर्फ कुछ दिन के लिए बीमार थे, ऐसा नहीं कि पूरे सफर में बीमार थे, चौथे इमाम मौजूद थे, लेकिन फिर भी ज़ैनब कुबरा भी खुतबा दे रही हैं, सैयद सज्जाद भी खुतबा दे रहे हैं। मौला हुसैन की एक और बेटी करबला में थी, फातिमा बिनतुल हुसैन। फातिमा बिनतुल हुसैन कई जगह पर वो रुकी, और जो जिम्मेदारी है मीडिया की जिम्मेदारी, जब दुश्मन प्रोपोगेंडा फैला रहा था कि बागी आए हैं, ये खड़े होके कह रहे थे, पहचानते हो हम कौन हैं, हम अहले बैत नबुवा हैं, हम वो हैं जिनके घर पर रिसालत उतरी थी। ये जिहाद तबीन था उस जमाने के दुश्मन के प्रोपोगेंडा के मुकाबले में, खुतबे और शायरी का इस्तेमाल करके दुश्मन के बेस में वो सेटअप जो दुश्मन ने बनाया था, वहां खड़े होकर ज़ैनब कुबरा ने दुश्मन के चेहरे से नकाब हटा दिया। ज़ैनब कुबरा, फातिमा बिनतुल हुसैन, उम्मे कुलसूम, ये खवातीन थीं, लेकिन इन मुश्किल हालात में पहाड़ की तरह हुसैनी मकसद पे बाकी थीं। ये है ज़ैनब, ये है करबला, ये है करबला की खवातीन। पूरे सफर में वो मैदान में डटी रहीं। किरदार ज़ैनब कितना बुलंद है, सोचें कि जब शाम से वापस आई हैं, और ये जो काफिले वाले थे, जो सिपाही थे, क्योंकि पलटते वक्त उन्होंने एहतराम से पलटाया, तो जनाबे ज़ैनब ने जेवर जमा किए अपने अहले खाना के, और सिपाहियों को हदिया दिया।

किरदार ज़ैनब कितना बुलंद है। पस अज़ीज़ाने गिरामी, ये तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी उनकी है, हल्लत बे फिनायक, वो लोग जो तमन्ना करते हैं या लैतनी कुंतु माकुम, जो करबला में नहीं थे लेकिन वो ये तमन्ना करते हैं कि हम करबला में होते और आज जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कि काश करबला में होते, जो वहां नहीं कर पाए आज करेंगे। चौथी कैटेगरी उम्मुल बनीन। उलमा कहते हैं कि जब काफिला मदीना से आया, मैं थोड़ा सा एक आपके लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पेश कर दूं, एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजाने गिरामी, इमाम हुसैन की शहादत के बाद बनी उमैया में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। यजीद कह रहा था उमर साद ने मारा, उमर साद कह रहा है इसने मारा, हर एक कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हुसैन को मैंने शहीद किया। दो नरेटिव का वॉर था, यजीद और बनी उमैया ये चाहते थे कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक कंफ्यूजन का स्टेट रहे और उसके बाद बोले एक हादसा हो गया, खत्म हो गया, छोड़े बात आगे बढ़ाएं। यहां पर अहले बैत को करबला को हादसा नहीं, एक मकतब और एक आइडियोलॉजी बनाना था, इसलिए गमे हुसैन को जिंदा रखना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो शिया आइडियोलॉजी का सेंट्रल फ्रेमवर्क बनेगा। अब अहले बैत उस जमाने में दुश्मन का पूरा प्लान ये था कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद पूरा वो सराउंडिंग करबला मिलिट्री जोन हो गया था, किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। दुश्मन चाहता था कि इमाम हुसैन का गम भुला दिया जाए, करबला वाले चाहते थे, अहले बैत चाहते थे कि करबला का गम याद रहे। क्यों? क्योंकि जब अगर आप चाहते हो जालिम की हुकूमत को बेनकाब करना तो उनके जुल्म को बेनकाब करना जरूरी था। अब हुआ ये कि कोई हुसैन इब्न अली की बात करने को तैयार नहीं है, खौफ का माहौल है। मैंने अर्ज किया था आपसे चौथे इमाम का जमाना है, इस जमाने में अगर सबको बताना है हुसैन शहीद हो गए तो मैंने एक तरीका बताया था, मीना में मजलिस के जरिए से करते थे। दूसरा तरीका यह था कि हजरत अब्बास के बेटे थे, उनका नाम अब्दुल्ला था, उम्मुल बनीन हजरत अब्बास के बेटे का हाथ पकड़ती थी और मदीना का जो चेक पॉइंट था जहां से लोग एंटर होते थे या एग्जिट करते थे, वहां बैठ के मरसिया पढ़ती थी, गिरिया करती थी, रोती थी। शहीद मुतारी कहते हैं कि भाई वहां क्यों रोती थी, घर पे क्यों नहीं रोती थी? घर पे भी तो रो सकती थी। कहा वहां इसलिए रोती थी क्योंकि वहां रोएंगी, पूछेंगे कौन है, कहां कहेंगे अली की जौजा है, पूछेंगे अली की जौजा क्यों रो रही है, कहेंगे कि अली का बेटा मारा गया, जब कहेंगे अली का बेटा मारा गया तो लोग पूछेंगे किसने मारा और बनी उमैया वहां से एक्सपोज होंगे। तो ये रोना, ये गिरिया करना अहले बैत की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, सिर्फ एक इमोशनल पॉइंट नहीं था। बस ये उम्मुल बनीन है और उम्मुल बनीन के बाद हर वो औरत, मैं हमारी बहनों को सलाम करता हूं, वाकई उनके जज्बों को सलाम करता हूं कि जितनी मजलिसे वो लोग करती हैं, जितने खुलूस से मजलिसे करती हैं, खुदा उनको सलामत रखे। और हमारे जो भी हमारे पास अहले बैत का इल्म पहुंचाए, यही माएँ थीं जो छोटे छोटे बच्चों को लेके मजलिसों में जाती थीं, मुश्किलों के साथ बैठती थीं, उन्होंने हमें अहले बैत का इल्म दिया, आज़ादारी का सलीका दिया। बस वो उम्मुल बनीन का कैरेक्टर, वो ज़ैनब कुबरा का कैरेक्टर, जहां पर आपका और मेरा जिंदगी

है कि अब्बास जब गिर्द गिर्द देखते हैं तो कोई नहीं बचता। हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं मौला इज्न मिलेगी, मरने की इजाजत मिलेगी। मक्तल में लिखा है, अब्बास कहते हैं मौला गम मेरे सीने में इतना भर गया है कि अब मुझसे जिया नहीं जाता। अब्बास की मजलूमियत को सोचे। मक्तल में है कि हुसैन इब्ने अली ने जब अब्बास ने कहा कि भैया मरने की इजाजत मिलेगी, तो मक्तल में है कि हुसैन पलटे और पलटने के बाद रोना शुरू किया। मक्तल में है कि अब्बा जब हुसैन रो रहे थे तो हिचकियां ले लेके रो रहे थे। भैया तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो ना, आलमदार हो ना, कहां है वो लश्कर जिसका मैं सरदार हूं? ना नासिर यावर है, ना अली अकबर और कासिम है, ना उनो मोहम्मद है, ना मुस्लिम है। अरबाब अज़ा दोनों भाई खड़े रो रहे थे कि अचानक सदा बुलंद हुई, खेमे से सदा आई, अलताश अलताश अलताश। छोटे छोटे बच्चे सदाएं बुलंद कर रहे थे, हाय प्यास मारे डालती है। अरबाब ऐसा कभी तसव्वुर करे, सोचे कि आप बहुत शुजा हैं, बहुत बहादुर हैं, और आपके बच्चे प्यास से भीख मांग रहे हो, कह रहे हो प्यास मारे डालती है। अरबाब ऐसा हुसैन ने कहा देखो एक काम करो, इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। अब्बास चले अरबाब अज़ा उस खेमे में गए जिस खेमे में पानी रखा जाता है, मश्क उस खेमे में थे। अब्बास गए, पता नहीं बच्चों की प्यास का क्या आलम था। सिर्फ इतना तसव्वुर कर ले कि अब्बास ने जब दर का पर्दा उठाया, देखा छोटे छोटे बच्चे प्यास के आलम में जमीन में लेटे हुए हैं, पानी नहीं है लेकिन मशकीजा उठाया है, सीने पे मशकीजा लगाए सुकून लेने की कोशिश कर। नहीं पता अरबाब अज़ा आपके दिल पे ये गुजर रही है, सोचे अब्बास ने देखा होगा, अब्बास के दिल पे क्या गुजरी होगी। अरबाब अज़ा अब्बास ने सकीना से कहा लाओ मशकीजा दे दो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाने जा रहा हूँ। सकीना खुश हो गई।

करके सकीना दर पे खड़ी हो गई। कह रही है आप परेशान ना होना, मेरे चचा कह रहे हैं पानी लाएंगे तो जरूर पानी लाएंगे। हार बाबे अब्बास चले दुश्मन का खेमा और दुश्मन की फौजें नामे अब्बास सुन के पीछे हटती रही। अब्बास फौजों को चीरते हुए उस जगह पे पहुंचे जहां अलकमा था, पानी था। ये भी अजीब मंजिल है, अब्बास के सामने पानी है, सकीना प्यासी है।

चुल्लू पानी फेंका, घोड़े पे सवार हुए, मशकीजा लिए है, मशकीजा लिए, बस एक दुआ करे खुदाया पानी खेमे तक पहुंच जाए। वहां सकीना बच्चों के साथ खड़ी है, अब्बास तो दिख नहीं रहे, अलम दिख रहा है दूर से। जैसे ही अलम नजदीक आ रहा था, सकीना की आस बढ़ती जा रही थी। अरे चचा रहे हैं, पानी ला रहे हैं, चचा रहे हैं, बस अलम पे नजर टिकी हुई है। क्या देखती है कि एक बार अलम हिला, बच्चे मायूस हो गए। फिर अलम थम गया, बच्चों को आस आ गई। फिर क्या देखा, एक बार फिर अलम हिला, सकीना फिर मायूस हो गई। हार बाबे अजा, आप गिरिया कर रहे हैं, सही था पहली बार जब अलम हिला तो अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ। अब्बास ने बाएं बाजू से अलम को थामा, किसी तरीके से आगे बढ़ो, बाया बाजू कलम हुआ। अब्बास ने सीने से अलम को थामा, मकतल में है अपने दांतों से मशकीजे का तस्मा पकड़ लिया। या अल्लाह या अल्लाह, ये पानी सकीना को पहुंच जाए। या अल्लाह, अब्बास दुआ कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उर्मुला ने तीर चलाया, तीर मशकीजे पे लगा, पानी बहा, अब्बास की उम्मीद खत्म हो गई। अब्बास ने घोड़े के रुख को मोड़ लिया, सकीना को ना देख पाऊंगा। अरबाबे अजा, अब्बास अपने आप को संभालना चाह रहे थे, इतने में एक तीर चला, अब्बास के आंखों में पैवस्त हो गया। अब्बास घोड़े पर है, आंखों में तीर है, हाथ नहीं है कि तीर निकाले। अब्बास झुके, दोनों घुटनों से कोशिश कर रहे हैं कि तीर निकाले। जैसे सर झुकाया, एक मलून आगे बढ़ा, गुर्ज लिया और अब्बास के सर पे गुर्ज। रोले उम्मुल बनीन को फुर्सा दे, फातिमा जहरा को फुर्सा दे। हार बाबे अजा, हुसैन इब्ने अली आए, अजब जलाल है मेरे मौला का। मैदान में दाखिल हुए, तीर शमशीर हाथों में, दुश्मन पे हमला करके कहते, अरे तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे अब्बास को मार दिया। आर बाबे अजा, आ वो मंजिल आई कि हुसैन अब्बास के पास आए। अब्बास ने कहा, भैया जब मैं पैदा हुआ था तो सबसे पहले मैंने आपका चेहरा देखा था, बस आखिरी बार भी आपका ही चेहरा देखना चाहता हूँ भैया। अरबाबे अजा, कैसे देखे, एक आंख में तीर है, दूसरे में खून भरा है। हुसैन ने हाथों से खून को साफ किया, हुसैन ने हाथों से खून को साफ किया।

के लिए नहीं लिया। नजफ का रुख करके कहा, बाबा बाबा 21 रमजान को कहा था ना कि अपने भाई पे जान दे देना,

आंखें खोली, आका को देखा, और वहां ऐसा मक्तल में है कि जैसे ही अब्बास को देख, जैसे ही हुसैन को देखा, अब्बास गिरिया करने लगे। अब्बास क्यों गिरिया कर रहे हो? अब्बास क्यों गिरिया कर रहे हो? अजब नहीं कहे कि मैं आखिरी हूं, मेरे पास हुसैन है। जब हुसैन घोड़े से गिरेगा तो कोई ना होगा, कोई पत्थर लेगा, कोई बाला तो कोई सिना, हुसैन जमीन पर होगा, किसी शमशीर कोई पत्थर। बाबे अजा, अरे हुसैन चाहते थे अब्बास को उठा ले, अब्बास को उठाने के लिए आगे बढ़े। कहा क्या कर रहे हो? कहा खेमे में ले जा रहा हूं। कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि खेमे में नज ले जाए। सकीना से अब्बास शर्मिंदा है, सकीना प्यासी है। बाबे अजा, अब्बास नहर किनारे वहीं पर शहीद हो गए। अरे आलम आया, जब आया तो सकीना खेमे में मुंतजिर थी, बाबा को आते हुए देखा, पूछा बाबा अम्मू नहीं आए? बाबा जोड़ के कहूंगा हाँ सकीना खाली अलम आया, अलमदार ना आया। हाँ सकीना अब तैयारी कर लो। बार बार सकीना अब्बास को बुलाएगी, जब तमाचे लगेंगे। तमाचे लगेंगे तब कहेगी मेरे चचा अब्बास कहाँ है। जब गोशवारे चीने जाएंगे पुकारेगी मेरे अब्बास। आर बाबे अजा, आखिरी जुमला है, सबसे सख्त ये था कि जब बाजार में अहले हरम गए हैं, एक मलून ने कहा सकीना को कनीजी में चाहता। अजब नहीं सकीना ने आवाज दी हो, चचा अब्बा आपके बाद क्या दिन देखने पड़ रहे हैं।